0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I would like to believe कि मैं एक बहुत ही सिक्योर इंसान हूँ और जब मैं रिलेशनशिप्स में होती हूँ तब भी मैं लार्जली बाय एंड लार्ज सिक्योर होती हूँ. लेकिन आई हैव नोटिस दिस वन पैटर्न ऑफ माइंड. ठीक है, हर रिलेशनशिप में जब भी मेरा बंदा डिसाइड्स टू मीट उसकी ना बहुत अच्छी बचपन की दोस्त, उसके साथ मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, आर यू ओके विद इट? ऑब्वियो मजबूरी में कहना पड़ता है, ऑफकोर्स आई एम ओके विद इट, यार क्या प्रॉब्लम है, तेरी बचपन की दोस्त है. बट To tell you very honestly, शायद I'm not 100% okay with it, because कहीं ना कहीं I've realized that I also feel very territorial and jealous कि इस relationship में तुझे क्या नहीं मिल रहा है जो तुझे अपनी ये बचपन की best friend के साथ coffee पीना है. And even though coffee lasts just, you know, 1.5-2 hours, मतलब मैं उन दो घंटे में ना wait करते करते घड़ी को देखते देखते ऐसे सड़ भुन जाती हूँ. And I think it's just a very natural human response, but ऐसा मुझे लग रहा है. क्या आप भी जब आपका relationship में boyfriend या girlfriend अपने बचपन के दोस्त को मिलने जाते हैं who happens to be of the opposite sex, क्या मेरी तरह आप भी like super territorial हो जाते हो और very unnaturally जल भुन जाते हो? अगर ऐसा सच है then why don't you hit me up and share your story with me, Morning Glory, Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCH.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: हाँ जी.
3: ये एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
2: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटी, चुप.
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
3: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी उसका,
2: उतार लीजिए उसको.
3: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
3: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसमें. देखिए,
3: हाँ, सुसु ही करा. चल,
2: उतार दीजिए.
3: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही है. क्लैपिंग करो.
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
2: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: मैनू नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
11: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
9: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने बॉयफ्रेंड को आपने अपने कुत्ते के चाटे हुए सैंडविचेस खिला दिए, आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? सीरियसली,
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: But that's okay. That's the reason I love you so much. क्योंकि आप ऐसे वाहियात चीजें करते हो and you're proud of it. और अगर आपके पास है एक सीक्रेट कन्फेशन मेरे पास है उसे सुनने के लिए, नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: मैं रोशी ठीक हूँ बहुत. अभी तक तो जब तक पकड़ा नहीं जा रहा.
1: आपने खुद ही मुझे पिक्चर का ट्रेलर सुना दिया है एंड योर पिक्चर साउंड्स रियली फन, क्योंकि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था. बट अब खुल के तसल्ली से बताओ, कांड क्या किया है आपने?
3: रोशी तो बात ऐसी है कि मैं ना जॉब ढूंढ रहा था और मेरे को जॉब मिल गई, रिमोट जॉब मिल गई. बढ़िया कि घर पे बैठना, कुछ नहीं करना. पर मैंने उसके साथ कहीं और भी अप्लाई कर रखा था, तो मैं वहाँ भी इंटरव्यू देने गया और वहाँ पे एचआर जो थी वो बहुत ही सुंदर थी. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी, मतलब हद नहीं है उसकी, कोई वो
1: अच्छा जी
3: से ऊपर कोई चीज नहीं है.
1: अच्छा ठीक है.
3: तो अब वो जो थी जॉब वो रिमोट जॉब नहीं थी, वो इन ऑफिस जॉब थी. तो मैंने वहाँ भी अप्लाई कर दिया, और मेरा दोनों जगह हो गया. और अब मैं पिछले 15 दिन से दो ऑफिस का काम कर रहा हूँ. मैं दो जगह काम कर रहा हूँ. वहाँ मैं पूरा दिन ऑफिस भी जा रहा हूँ और दूसरी कंपनी का काम भी कर रहा हूँ. और एचआर से बात करने के बहाने ढूंढ रहा
1: हूँ वहाँ से.
3: पर वो एचआर जो है ना, वो अभी उसकी शादी हुई है, वो पहन के आती है टूढ़ा बूढ़ा. तो अभी उसकी न्यूली वेड है वो, मतलब पता लगता है कि हाँ, क्योंकि फेस पे ग्लो ही इतना है जी.
1: Let me get this right. आपने ये रिमोट जॉब वाली जॉब लिया बिकॉज यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग या व्हाटएवर, सहूलियत की घर पे रहना है. यू आर क्रशिंग ऑन द एचआर हेड जिसकी नई नई शादी हुई है.
3: हाँ, और वो रिमोट वाले बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे तो मेरे को वो करनी थी. पर यहाँ पे एचआर इतनी सुंदर थी, मेरे को ये भी करनी थी. तो अब मैं पिछले 15 दिन से बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ क्या. मेरे को प्लीज आप बता दो कि मेरे को क्या करना है.
1: देखो, आप कभी ना कभी तो थकोगे और उस बेचारी की शादी हो गई है, दैट मींस कि आपके पास कोई एक्चुअल रास्ता नहीं है अराउंड हर हार्ट. तो आप कभी ना कभी थक जाओगे, ये एचआर वाली नौकरी छोड़ दोगे, रिमोट जॉब वाले वैसे ही आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं. तो एंजॉय करो व्हाइल यू आर जगलिंग दीज टू बॉल्स इन द एयर. हो पाएगा आपसे?
3: कोशिश कर रहा हूँ.
1: हंस तो ऐसे रहा
3: तो जब तक हो रहा है तब तक कर दूंगा.
1: आप थोड़ी सी रोशेफिकेशन ले लो, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी होपफुली. अपनी गहरी सी एक सांस लो एंड
4: Roshified.
3: Thank you so much, Roshi.
1: You are most welcome. I did not know that people existed who have a kink ki samne wale insaan ne chuda pehna ho shaadi karne ka, wo bhi aap se shaadi nahi, kisi aur se. Agar aapki bhi zindagi mein aisi koi ajeeb aur gareeb confession hai, gareeb hai to bhi chalega, I have no like financial issues, hit me up on Insta ya FP. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai Rochie. So go ahead and do whatever you have to do. Lekin kahin mat jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
2: In association with World Vegan Vision.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 vage Shirji Rudrabhishek ane Sanje 5 vage Virat Deep Yagna. Ravivar 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ 732-357-8200 જય ગુરુદેવ.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: Goes down the ground.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: दुनिया आपसे ये कहेगी दैट देयर आर सेवन लव लैंग्वेजेस, जिसमें से गिफ्ट गिविंग, प्यार की बातें करना, याडा याडा याडा, वो सब है लव लैंग्वेजेस. लेकिन एक एट्थ लव लैंग्वेज भी है जिसकी मैं एक बहुत ही बड़ी फैन हूँ. इट्स ऑलमोस्ट माय रिलीजन. और वो लव लैंग्वेज है ऑफ बीइंग एन इंटेंशनल मेनेस. आप अपने पार्टनर के नाक में दम करके रखो 2400 घंटे विदाउट अ पॉज. अगर आपने कहा है कि आपको भूख नहीं लगी है, उसने अपने लिए एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं, आप जानबूझ के आधा प्लेट कम से कम उसके फ्रेंच फ्राइज खत्म कर दोगे. वो आपसे एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू टेल हिम आई कैन ओनली डू दैट व्हेन यू डू अ हेडस्टैंड. हो सकता है कि आपका मन किया उसे एक वॉइस नोट भेजने का, लेकिन आपने अपनी सबसे बेसुरी आवाज में उसे इट्स अर्जेंट कहकर एक बेहतरीन गंदा वाहियात गाना गाया, जैसे कि फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू. ही इज इन द मिडल ऑफ हिज मीटिंग एंड ही हैज टू हियर योर टेरिबल वॉइस नोट बिकॉज यू लव हिम. दिस इज योर लव लैंग्वेज. मैं इसमें एक स्पेशलिस्ट हूं, और अगर मेरी तरह आपके लिए भी लव लैंग्वेज इज बेसिकली जस्ट बीइंग इंटेंशनली अ न्यूसेंस टू योर पार्टनर, आई थिंक हम दोनों के बीच में इतनी सारी चीजें कॉमन है दैट अब तो हमें नोट्स कंपेयर कर ही लेने चाहिए. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RO CHIE. So go ahead, जानू मानू, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: So, main 26 years old hoon and I am dating this guy who's about 34 years old aur hum pichle 6 mahine se date kar rahe hain. I adore him. Mere hisab se he's a 10 on 10. Akela rehta hai, uske parents dusre city mein rehte hain. The only problem in this relationship is ki hume date karte hue 6 mahine ho gaye lekin abhi tak usne mujhe apne ghar par invite nahi kiya. In fact, when I told him ki hum uske ghar jaake bhi chill kar sakte hain since he lives alone, usne mujhe kaha ki sirf uske parents aate hain use visit karne ke liye uske ghar par, and the rest of the world including me is out of bounds for him. Doesn't that sound kind of weird?
2: Roshi ke DM se.
1: Shakti ne mujhe ye message likar bheja hai, and Shakti, it does sound really weird. I mean, kya aap uske family se mile ho, uske friends se mile ho, anyone from his side? Because आपकी ये स्टोरी सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है दैट यू माइट इवन एंड अप बीइंग हिज साइड चिक और शायद उसके घर पे उसकी एक एक्चुअल बीवी हो या एक लिव इन पार्टनर हो एंड हो सकता है देयर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और उसकी गर्लफ्रेंड का सामान उसके घर पर हो बिकॉज एक आदमी जब अकेले रह रहा होता है द बेस्ट थिंग दैट ही लुक्स फॉरवर्ड टू इज कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी की परमिशन लिए या बिना किसी से पूछे घर पर ला सकता है एंड इफ ही इज बिहेविंग दिस वे दिस इज डेफिनेटली अ वेरी सस्पिशियस एक्टिविटी एंड आपको उसके बारे में डायरेक्टली बात करनी चाहिए बिकॉज दिस डज नॉट साउंड राइट एंड ऑन दैट नोट अगर शक्ति की तरह आपकी भी जिंदगी में कुछ बहुत ही पिक्यूलियर हो रहा है आपके रिलेशनशिप लाइफ में एंड यू डोंट नो हू टू आस्क हिट मी अप बिकॉज आई एम योर ब्रोशी नाम है मिर्ची रोशी नाम के स्पेलिंग है ROCHIE सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieta la burga.
2: Mirci, burga.
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ है सर?
3: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी, इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
4: चाहिए
3: इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना
3: है? यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है?
3: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
3: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
4: सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी, जी
3: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: सर क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: ये पकड़ा।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग 0 closing cost रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपको एक डेटिंग ऐप टिप देती हूँ दैट विल हेल्प यू फॉर लाइफ. वो टिप ये है कि डोंट यूज टू मैनी डेटिंग एप्स. जहां आपको लग रहा है कि मोर डेटिंग एप्स मीन्स हायर ऑड्स ऑफ फाइंडिंग समबडी यू मैच विद, द ट्रूथ इज मोर डेटिंग एप्स का मतलब सिर्फ ये है मोर फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट. डेटिंग ऐप पर आपको कभी आपका कोई अच्छा सा पार्टनर या फिर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर या फिर Like somebody you actually ended up getting married with, aisa koi bhi insaan mila hai, I want to hear your story, Morning Glory. Hit me up on Insta ya FB to talk about it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. Aur mere saath line par abhi Arpit hai. Hi Arpit.
2: Yes.
1: Arpit, pehchana nahi aapne mujhe ya aap drama kar rahe ho na pehchane ka? Ye kaisi baat hai yaar?
2: Roshi, Roshi, sorry.
1: This is so bad yaar, agar hum boyfriend girlfriend hote to aap mere saath aisa bartav karte.
2: अरे आई विश
1: रियली. दुनिया के कौन से कोने से बात कर रहे हो आप?
2: मैं इंदौर से कर रहा हूँ.
1: तो डेटिंग ऐप डाउनलोडेड है?
2: यस यस.
1: कितने डेटिंग ऐप्स हैं? एक, दो, तीन, चार, कितने?
2: अभी तो एक ही अभी यूज कर रहा हूँ मैं.
1: लाइक हाउ मेनी पीपल हैव यू मैच्ड विद? स्टोरी क्या है?
2: 20-25 तो कम से कम मैंने.
1: फिर कुछ हुआ?
2: शायद मेरी स्किल थोड़ी अच्छी नहीं है तो उस कारण से मेरे को रिजेक्शन ही मिलते हैं.
1: नहीं, एक सेकंड. सो व्हाट हैपेंस, लाइक कहाँ तक बात चली जाती है और फिर कहाँ पर ड्रॉप आता है?
2: बात तो जैसे मिलने तक जाती है. पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, तो एक बार ही मिलता हूँ, उसके बाद तो खत्म.
1: कितनी बार, लाइक कैसे, कितने डेट्स करे हैं? यू हैव गॉन आउट एंड मेट पीपल एंड इट हैजंट वर्कड आउट फॉर यू?
2: होंगे यार 20-25.
1: सो व्हाट इज, आपके हिसाब से व्हाट इज इट दैट्स नॉट वर्किंग आउट? लाइक क्या है जो गलत जा रहा है?
2: गलत ये है कि मैं टॉक्स नहीं कर पाता, मतलब शेयर नहीं कर पाता यार. पता नहीं क्या दिक्कत है. तो क्या है कि वो लड़की उसी के लिए आती है. अब मेरे पास ऐसा डेडिकेशन नहीं उनके लिए कि मैं कुछ करूं या बताऊं उनको.
1: डेडिकेशन नहीं है मतलब, देख अगर मैं किसी रिलेशनशिप में होंगी तो मैं चाहूंगी कि मेरा पार्टनर मेरे साथ शेयर करे उसके फियर्स और इनसिक्योरिटीज, उसके हॉबीज और इंटरेस्ट. ऑब्वियस सी बात है यार.
2: अरे प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे अब मैं, मेरी कास्ट ऐसी है, वैसे तो अरेंज मैरिज होती है उसमें.
1: सो आप जब डेटिंग एप्स पे लोगों को मिलने जाते हो, आप इस प्रीकंसीव नोशन से जाते हो कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं, बात आगे तो बढ़नी नहीं है, एट द मोस्ट वी विल गेट नॉटी और उसके बाद सब कुछ खत्म, बिकॉज मैं इस बात को शादी तक नहीं लेके जाऊंगा, है ना?
2: हाँ,
1: तो यार
2: इसीलिए मैं कुछ शेयर नहीं कर पाता. वाइब मैच करती है ना.
1: हाँ,
2: तो मैं बिल्कुल करता हूँ, मतलब ऐसी है. जैसे मैंने आज तक है ना कभी मतलब अप्रोच नहीं करा किसी को सामने से.
1: हाँ.
2: पता नहीं क्यों, मतलब कैसे.
1: क्यूट है तो इसलिए, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली.
2: वैसे आप कहाँ से हैं?
1: जी मैं आपके दिल से हूँ. आप मुझ पे लाइन मार रहे हैं?
2: हाँ वो तो मार रहा हूँ ना.
1: अर्पित, द थिंग इज नॉट डार्लिंग, अभी शादी का मूड नहीं हो रहा मेरा.
2: ऐसा तो नहीं हो सकता है
1: क्या? क्यों, आपको लगता है? आई एम सो सिंगल कि मेरे सामने एक अमीबा भी डबल लगता है. I'm that single. आपको बुरा लग रहा है मेरे लिए?
2: बुरा तो लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है.
1: कितने बेशरम इंसान हो यार. पर आपकी ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी. जस्ट फॉर योर ऑनेस्टी आपको रोशिफाई कर दूं? करती तो हूं नहीं मैं वैसे इन कॉन्वर्सेशंस में, अनलेस यू आर गिविंग मी अ कन्फेशन. बट यू आर सो क्यूट, आई वांट टू रोशिफाई यू.
2: ओके
1: तो ले लो.
2: You've been...

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: स्कूल में कितनी बार हमने ऐसे राइटिंग की थी, राइट? नाउ इमेजिन इफ यू टुक दैट सेम एबिलिटी एंड टर्न इट ऑन इट्स फीट टू टर्न इट इनटू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉटी. अभी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, ऑल्सो बिकॉज आई हैव बीन अ राइटर फॉर हाफ माई लाइफ. अपने पार्टनर के लिए एक एक्साइटिंग सी, पैशनेट, स्लाइटली नॉटी स्टोरी लिख कर या तो उसे ई मेल कर दो या व्हाट्सएप पर भेज दो या उसके ब्रीफ केस में या वॉट एवर हिज बैग इज उसमें स्लिप कर दो, सो दैट वेन योर पार्टनर रीड्स द स्टोरी जो सिर्फ आपने उसी के पढ़ने के लिए लिखी है, देन दे गेट इन द मूड फॉर लव एंड बाय द टाइम दे एंड अप सीइंग यू, उनके खुद के नॉटी आइडियाज आर गोइंग सो क्रेजी दैट यू एंड अप हैविंग द मोस्ट पैशनेट टाइम ऑफ योर लाइव्स टुगेदर. अब ये दोपहर के 3 बजे हो सकता है, रात के 11 बजे हो सकता है, दैट्स नॉट द पॉइंट. The point is, you can turn any time of the day into the time for love. Isse try karke dekho and once it works for you, thank you bolne ke liye, aap mujhe dhoond sakte ho Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, darling, do what you need to do. Lekin, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। 92.7
1: FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: If as a guy, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सीमेंट करना चाहते हो, यू रियली वॉन्ट टू कन्विंस योर वुमन की यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर हर, और आप एक एफ बॉय नहीं हो, देन लेट मी टेल यू समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई ओन पर्सनल रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस. वो बात ये है दैट औरतों को रियली कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप बहुत ग्रैंड जेस्टर्स कर रहे हो, अनलेस शी इज अ बिट ऑफ अ गोल्ड डिगर एंड शी इज टेलिंग यू मेनू लहंगा ले दे महंगा जा. फॉर अ रेगुलर वुमन लाइक मी, जो छोटे जेस्टर्स होते हैं ना, रिपीटेडली किए गए छोटे जेस्टर्स, दे आर द वंस दैट कन्विंस a woman कि आप trustworthy हो, आप stable हो और आप कहीं नहीं जाने वाले हो. Like I remember in one of my relationships, there was this guy जो रोज मुझे एक नोट लिखकर घर पर भिजवाता था. Now that was really difficult क्योंकि वो पहले नोट लिखता था, फिर वो अपने दोस्त को देता था जो मेरे घर के पास काम करता था. रोज उसका दोस्त डिटूर लेकर मेरे घर पर वो नोट छोड़कर जाता था. But the consistency of that gesture and that promise कि जब तक हम इकट्ठे हैं वो यही करता रहेगा, that made me believe in him so much that आज जब हम एक रिलेशनशिप में नहीं है तो भी वी आर सच गुड फ्रेंड्स, टचवुड. तो अब आप सीख गए हो ना कि क्या करना है अपने रिलेशनशिप में इफ यू वांट योर वुमन टू स्टे एंड टू नो दैट यू रियली लव हर. और अगर अभी भी

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल है क्या?
2: पागल आप, पागल आप, पागल आप है
1: क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए,
2: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटक। लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अपने बॉयफ्रेंड को आपने अपने कुत्ते के चाटे हुए सैंडविचेस खिला दिए, आपको शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? सीरियसली,
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: But that's okay. That's the reason I love you so much. क्योंकि आप ऐसे वाहियात चीजें करते हो and you're proud of it. और अगर आपके पास है एक secret confession, मेरे पास है उसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे mystery caller. Hello, mystery caller.
2: Hi, Roshi.
1: How are you?
2: मैं Roshi ठीक हूँ बहुत. अभी तक तो जब तक पकड़ा नहीं जा रहा.
1: आपने खुद ही मुझे पिक्चर का ट्रेलर सुना दिया है एंड योर पिक्चर साउंड्स रियली फन, क्योंकि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था. बट अब खुल के तसल्ली से बताओ, कांड क्या किया है आपने?
2: रोशी, तो बात ऐसी है कि मैं ना जॉब ढूंढ रहा था और मेरे को जॉब मिल गई, रिमोट जॉब मिल गई. बढ़िया कि घर पे बैठना, कुछ नहीं करना. पर मैंने उसके साथ कहीं और भी अप्लाई कर रखा था, तो मैं वहाँ भी इंटरव्यू देने गया और वहाँ पे एचआर जो थी वो बहुत ही सुंदर थी. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी, मतलब हद नहीं है उसकी कोई, वो
1: अच्छा जी,
2: उससे ऊपर कोई चीज नहीं है.
1: अच्छा ठीक है. हाँ.
2: तो अब वो जो थी जॉब, वो रिमोट जॉब नहीं थी, वो इन ऑफिस जॉब थी.
1: हाँ.
2: तो मैंने वहाँ भी अप्लाई कर दिया, और मेरा दोनों जगह हो गया.
1: हाँ.
2: और अब मैं पिछले 15 दिन से दो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं दो जगह काम कर रहा हूँ. वहाँ मैं पूरा

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आज मैंने एक बहुत पुरानी किताब निकाली पढ़ने के लिए और उसमें मेरी मॉम ने मेरे लिए एक छोटा सा नोट लिखा था। शायद ये नोट 6-7-8 साल पुराना है, गॉड नोज, लेकिन उस नोट के एजेस अब येलो हो चुके हैं, सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये नोट काफी पुराना है। उस नोट पर पता है मम्मी ने क्या लिखा था? मम्मी ने लिखा था, मेरी प्यारी रोशी, भगवान तुम्हें फूल देने वाला भी दे और फूलों की तरह रखने वाला भी दे। और अब जब मैं उस नोट को शायद 25वीं बार पढ़ रही हूँ, मुझे अभी भी इतना इमोशनल लग रहा है ना ये पढ़ के, बिकॉज हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहे, उसी से प्यार करे। और अगर आप एक ऐसे लकी इंसान हैं जिसकी माँ की सारी दुआएं सुन ली गई हैं एंड यू हैव मेट दैट परफेक्ट समबडी जो आपको फूलों की तरह रखता है, आपके लिए फूल बिछा देता है, उसका दिल आपके लिए एक फूल ही तो है, व्हाई डोंट यू टेल मी योर लव स्टोरी मेरी जान। मेरा नाम है मिर्ची रोशी एंड आई एम द गर्ल इन लव विद लव। और अपनी ये लव स्टोरी भेजने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in.
3: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना। लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान। और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है, क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन। एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का। और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में। हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं। दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर। एंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट। लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस। शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से। ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है, सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन, कहीं जाना मत। आई विल बी बैक।
4: Number 20.

मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है, और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।

0: दिस फिल्म मैन जब वी मेट, और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं। एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कम्प्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था कि बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है, फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस और श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी,
1: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: हेलो
2: बहन जी.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटी, चुप.
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
2: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका.
1: उतार लीजिए.
2: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
2: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
1: देखिए सुसू करा होगा उसने. देखिए,
2: हाँ, सुसु ही करा. चल,
1: उतार दीजिए.
2: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आ जरा. देखो आंटी कर रही है. क्लैपिंग करो. मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
1: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. नंबर 11.

0: चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है। इसे शाम की ठंडी हवा, इसे वो लंबी ड्राइव, इसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना। और हाँ, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है। दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। एंड हाउ शाहिद कैन स्टिल लुक सो कन्विंसिंग एज अ कॉलेज बॉय, इट टोटली बैफल्स मी, बट ही नेल्स इट। मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, बस इतना पता है मैं इसे स्किप नहीं कर पा रहा, एंड मे बी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ सॉन्ग कैन गेट। Maybe this song will go to number 1, लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds, और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का दो अलग दुनिया एक साथ। This is तुझको from Cocktail 2.
1: Number 10.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. It's

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा, वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज। संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे, और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड ये बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना रामा रे, उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 3.

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ? करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, वी गॉट रोमांस, वी गॉट एक्शन, वी गॉट पेट्रियोटिज्म, लेकिन स्टाइलिश इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ऐसा एंटी हीरो जिसके लिए आप सीक्रेटली रूट करने लगते हो, देयर इज नन, जीरो, कोई भी नहीं है। और शायद इसलिए डॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉलीवुड हर दूसरे हफ्ते एक सीक्वल अनाउंस करता है, तब उसकी सबसे यूनिक फ्रेंचाइज अनसर्टेंटी में खड़ी है, एंड दैट फील स्ट्रेंज। हो सकता है डॉन 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, विच इज वाई आई सेड इट्स द डेथ ऑफ कूल। सो नाउ इट इज अप टू फरहान अख्तर, वही डिसाइड कर सकते हैं इफ इंडिया गेट्स अनदर डॉन, इफ द वर्ल्ड गेट्स अनदर डॉन, या फिर मे बी वी हैव सीन द लास्ट ऑफ हिम। फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर 1 एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव, ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर 1, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर।
1: नंबर 1।

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ये तो हम सब जानते हैं कि शोले फिल्म कम्प्लीटली ओरिजिनल नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म के ट्रेसेस सिमिलैरिटीज आपको बहुत सारी वेस्टर्न फिल्म्स और इंडियन सिनेमा की फिल्म्स में भी दिखेंगी, जिनमें से एक फिल्म है ये जिसका गाना हमने सुना था अभी, मेरा गांव मेरा देश, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मास्टर डायरेक्टर राज खोसला ने, जिन्हें इंडियन सिनेमा में नॉयर फिल्म्स या डार्क फिल्म्स का पायनियर भी कहा जाता है। नॉयर या डार्क फिल्म्स जिनमें होता है सस्पेंस, मिस्ट्री, मर्डर, किडनैप, धोखा, लूट, मार, वायलेंस, सेक्सुअलिटी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी ऐसी डार्क डार्क सी रहती है, जैसे पूरी फिल्म में अंधेरा हो, लाइट गई हुई है। वैसे तो बहुत से डायरेक्टर्स ने डार्क फिल्में बनाई हैं, बट राज खोसला साहब वॉज अ मास्टर इन दिस क्राफ्ट। उनके डायरेक्शन की जर्नी की शुरुआत तो हुई थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू गुरुदत्त साहब, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ ना सर?
3: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ। ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
4: चाहिए
3: इसको, यूरिन की कमी हो गई है। आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना है?
3: यूरिन चढ़ाना है इसका, सारा यूरिन खत्म हो गया। प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
3: है? मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया। आपका ग्रुप मिल गया
4: सर? इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास सारी डिटेल है। 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी जी।
3: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

आज बातें हो रही हैं 50s, 60s, 70s के वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला साहब की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई इनका जन्म 1925 में पंजाब में हुआ था। अच्छा, फिर कुछ सालों बाद इनकी फैमिली पंजाब से बॉम्बे आ गई। पढ़ाई के साथ साथ इनको म्यूजिक का बहुत शौक था। इन्होंने म्यूजिक में, सिंगिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली। इनफैक्ट जब ये बड़े हुए तो केएल सहगल साहब के साथ, केएल सहगल साहब इनके घर के पास ही रहते थे, उनके यहाँ पे जाते थे, उनके साथ रियाज भी करते थे। इट वॉज एक्टर सिंगर केएल सहगल साहब जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि भाई तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम भी जरा रेडियो पे या फिल्मों में गाने का ट्राई करो। और ये निकल गए ट्राई करने। इनको क्या पता था कि ये जो निकले हैं तो पहुंचेंगे गुरुदत्त साहब के पास और उसके बाद बन जाएंगे इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्टर्स। इस जर्नी की भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

मेरा साया फिल्म से ये गाना। आज पुरानी जीन्स पर हम जो गाने सुन रहे हैं ना, वो ज्यादातर राज खोसला साहब की फिल्मों से है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज खोसला साहब इंडियन सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स में से एक। इनकी सिर्फ फिल्में तोप नहीं होती थी, इन फिल्मों का म्यूजिक भी डोप होता था, बिकॉज राज खोसला साहब वॉज अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन। इनफैक्ट ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। अपने नेबर एक्टर सिंगर KL सहगल के सजेशन पे ये भी फिल्मों में गाना गाने आजमाने के लिए चले गए। कुछ एक दो फिल्मों में इन्होंने गाना गाया भी और फिर ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक स्टाफ में शामिल हो गए। ये मैं लेट 40s की बात कर रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने एक फिल्म में छोटा सा रोल भी किया था, एक हीरोइन के लिए बॉडी डबल का रोल। मतलब उस हीरोइन के लिए घुड़सवारी का एक सीन शूट करना था, तो इन्होंने उसकी जगह पे शूट किया विग वगैरह लगा के। बट ही रियली वॉन्टेड टू बी अ प्लेबैक सिंगर। लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे उनकी लाइफ में देवानंद जैसा दोस्त और गुरुदत्त जैसा मेंटर आने वाला है, कि आने वाले कुछ सालों में वो एक सुपरहिट फिल्म, एक क्राइम थ्रिलर CID डायरेक्ट करने वाले हैं। इस बारे में करेंगे बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Yeah.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स बनाने वाले डायरेक्टर्स में से एक बड़ा नाम है राज खोसला साहब का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है खोसला साहब को म्यूजिक से इतना प्यार था, इतने पैशनेट थे वो ट्रेंड सिंगर भी थे, वो फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे और इसी के लिए जब वो लेट 40s में स्ट्रगल कर रहे थे तब वो मिले देवानंद साहब से। देवानंद साहब ने पहचान लिया कि इस लड़के में कोई बात है, इसको चांस देना चाहिए। उसी दौरान देवानंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स लॉन्च हो रही थी, जिसकी पहली फिल्म बाजी डायरेक्ट कर रहे थे देवानंद के दोस्त गुरुदत्त साहब। और तब देवानंद ने राज खोसला साहब को सजेस्ट किया कि भाई तुम मेरे इस फ्रेंड को जो मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है उसको असिस्ट क्यों नहीं करते, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है। खोसला साहब ने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते। और जब वो गुरुदत्त साहब से मिलने पहुंचे, उस मुलाकात में क्या हुआ करते हैं इस बारे में बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाज कदम भी चल न सकोगे समझे।

डायरेक्टर राज खोसला जब फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लेट 40s में, तब उनकी लाइफ में फरिश्ते दोस्त बनकर आए देवानंद। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। देवानंद साहब ने इनको कहा कि भाई मेरी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स के अंडर एक फिल्म बन रही है जिसे मेरा दोस्त गुरुदत्त डायरेक्ट कर रहा है, उसकी भी ये पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर, उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो मुझसे जाके मिलो, हो सकता है तुमको गाने का मौका भी मिल जाए। भाई ये 1951 की बाजी फिल्म थी। और खोसला साहब जब गुरुदत्त से मिलने गए तो गुरुदत्त साहब ने उनसे पहला सवाल पूछा, क्या तुमने कभी पहले किसी फिल्म में असिस्ट किया है? इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया हाँ। फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमको हिंदी आती है? इन्होंने फिर सफेद झूठ बोल दिया हाँ। भाई खोसला साहब और उनका परिवार काफी टाइम तक पंजाब में रहा था, जहाँ पे उस टाइम उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो उनको उर्दू आती थी लेकिन हिंदी नहीं आती थी। पर ये झूठ जो इन्होंने बोले तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि ठीक है कल से आ जाओ मुझे असिस्ट करने। इस मीटिंग से बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज जो खोसला साहब ने की वो हिंदी सिखाने वाली किताब खरीदी और गुरुदत्त साहब को उनकी फिल्मों में अर्ली 50s में असिस्ट करना शुरू कर दिया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार?
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना जल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप हैं कि पागल आप हैं? पागल आप हैं
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans, Charu ke saath. Sirf Mirchi par.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सीआईडी फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त साहब ने और डायरेक्ट किया था उनके मेंटी, उनके शागिर्द डायरेक्टर राज खोसला ने। लेट 50s में ना गुरुदत्त साहब एक फिल्म बनाना चाह रहे थे वहीदा रहमान और सुनील दत्त के साथ। फिल्म का नाम था राज। फिल्म अनाउंस भी हो गई थी लेकिन कुछ ही दिनों बाद बंद कर दी गई। फिर अर्ली 60s में वापस ये फिल्म बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बनी। लेकिन गुरुदत्त साहब के शागिर्द उनके मेंटी राज खोसला साहब ये स्क्रिप्ट भूल नहीं पाए, जो कि एक नॉवल द वुमन इन व्हाइट पर बेस्ड थी। राज खोसला साहब ने वही स्क्रिप्ट यूज करके 1964 में एक ब्रिलियंट फिल्म बनाई। फिल्म का नाम वो कौन थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
0: Purani Jeans with Charu, only on

पुरानी जीन्स पर आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर राज खोसला साहब की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो डायरेक्टर जिन्होंने इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स को एक नई डेफिनेशन दी। ये सस्पेंस थ्रिलर जिसका हमने अभी गाना सुना, मेरा साया फिल्म, ये भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। अच्छा, क्योंकि खोसला साहब खुद म्यूजिक में ट्रेंड थे, उनकी फिल्मों का म्यूजिक भी उनकी USP होता था। तो एक फिल्म के म्यूजिक में ना एक म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने एक ट्यून इनको सुनाई लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक बार नहीं बल्कि 5 बार रिजेक्ट कर दी, लेकिन म्यूजिक कंपोजर इस ट्यून को लेकर बहुत श्योर थे। उन्होंने फिल्म के हीरो से बात की कि भाई आप जरा डायरेक्टर साहब को समझाइए, ये बहुत अच्छा गाना बनने वाला है। इस बार खोसला साहब ने फिल्म के हीरो के साथ बैठकर ये धुन वापस से सुनी, और ऐसा सुनने में आता है कि धुन सुनते सुनते वो अचानक कमरे से बाहर चले गए, दूसरे कमरे से एक चप्पल उठा के लाए और खुद को चप्पल से मारने लग गए कि ये धुन मुझे कैसे नहीं पसंद आई। वो म्यूजिक कंपोजर थे मदन मोहन, वो फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, वो फिल्म थी 1964 की वो कौन थी, और वो गाना था लता मंगेशकर की आवाज में दिस आइकॉनिक सॉन्ग पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला
1: तेरा क्या होगा कालिया
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
1: अब मिर्ची खा
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी चीज़ विद चारू ओनली

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10:15 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

अब बहनों भाइयों, अब मेरा साया फिल्म का ये गीत उस साल गीतमाला में चौथे पायदान पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सिर्फ यही गाना नहीं, डायरेक्टर राज खोसला की फिल्मों के कई गाने इस चार्ट में, इस काउंटडाउन में टॉप पे थे। राज खोसला साहब उन डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्हें हम म्यूजिकल डायरेक्टर बोल सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टर जिनकी फिल्में तो टॉप होती थी, म्यूजिक भी एकदम डोप होता था। और इनके केस में तो ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि खुद ये एक ट्रेंड सिंगर थे। एज डायरेक्टर अपने 35 साल के करियर में उन्होंने कुछ 25 फिल्में डायरेक्ट की होंगी और ऑलमोस्ट सभी का म्यूजिक क्या म्यूजिक रहा है। क्या कवाली, क्या गजल, क्या सूफी कविताएं, क्या रोमांस और क्या फोक सॉन्ग्स, सभी को जगह मिली है राज खोसला साहब की फिल्मों में। खासकर के फोक सॉन्ग्स की बात करें तो उनकी हर फिल्म में ऐसा कोई सॉन्ग होता था जिसमें फोक का फ्लेवर होता था, जैसे कि ये हमने सुना था मेरा साया का आइकॉनिक सॉन्ग झुमका गिरा रे, एंड द नेक्स्ट वन दो रास्ते फिल्म का गाना जो भाइयों बहनों उस साल गीतमाला में पायदान नंबर एक पर था। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ
3: सर? हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ। ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं
4: चाहिए
3: इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना
3: है? यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
3: है? मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
3: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल
4: गया सर? इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी, जी
3: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

याद कर रहे हैं आज हम राज खोसला साहब को। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। द ब्रिलियंट आइकॉनिक डायरेक्टर जो अपनी नॉयर डार्क फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन फिल्मों के म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं और एक और चीज के लिए जाने जाते हैं कि उनकी फिल्म की कहानियां अक्सर वुमेन सेंट्रिक होती थी। वहीदा रहमान जी का डेब्यू उनकी डायरेक्टेड फिल्म CID से हुआ। हालांकि वहीदा रहमान जैसे उनकी काफी खिटपिट रहती थी, तो भी जिस तरह से उस फिल्म में उनको प्रेजेंट किया गया एज अ वैम्प और फिर बाद में 16 साल मूवी में जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया, दैट वाज ब्रिलियंट। आगे जाके वो कौन थी, मेरा साया और अनीता ऐसी फिल्मों से उनका साधना के साथ एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन हुआ। इन तीन मिस्ट्री फिल्मों ने इस साधना को मिस्ट्री गर्ल का टाइटल दे दिया। दो बदन जैसी मूवी ने आशा पारेख की जो चंचल चुलबुली हीरोइन वाली इमेज थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पे एस्टैब्लिश किया। फिर दो रास्ते फिल्म में मुमताज का पोर्ट्रेयल एंड नॉट टू फॉरगेट मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और इनकी फिल्मों के जो गाने होते थे उसमें जिस तरह से एक वुमन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था, दैट यूज्ड टू बी सो वाओ। मुझे इनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश का एक गाना बहुत पसंद है जो मैं आपको सुनाती हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
5: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

क्या ही गाना है और क्या ही डांस किया है वहीदा रहमान जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये CID फिल्म का गाना है जो वहीदा रहमान जी की पहली हिंदी फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड बाय गुरुदत्त एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला। इस गाने का वीडियो अगर आप देखेंगे ना, इसमें वहीदा रहमान जी ने सूट के ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो कि डायरेक्टर के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें वहीदा रहमान जी एक वैम्प के रोल में हैं और इस गाने में पर्टिकुलरली वो एक विलन को, एक बंदे को ल्योर कर रही है, रिझा रही है। तो डायरेक्टर ने कहा कि दुपट्टा नहीं ओढ़ना है और वहीदा जी अड़ गई कि मुझे तो ओढ़ना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहीं से इन दोनों की, डायरेक्टर राज खोसला और वहीदा रहमान जी की, थोड़ी खिटपिट शुरू हो गई, जो कंटिन्यू रही इनकी अगली फिल्म 16 साल में भी, जहाँ पे एक सीन था जहाँ हीरोइन पानी में कूद जाती है, हीरो उसको बचाता है, फिर दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ दोनों कपड़े चेंज करते हैं। इस सीन में वहीदा रहमान जी का थोड़ा सा ऐसा शोल्डर दिखाया जाना था, उनकी स्किन दिखाई जानी थी, इसके लिए भी उन्होंने साफ मना कर दिया। इस बात पे उनकी और डायरेक्टर राज खोसला की इतनी लड़ाई हुई कि दोनों ने कसम खाली की एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। ये कसम टूटी 26 साल के बाद, जब 1984 में सनी मूवी में दोनों ने साथ में काम किया। खैर, टॉकिंग अबाउट 16 साल, उसका ये गाना क्या गाना है, आइकॉनिक है, कल्ट है, क्लासिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन.

आज पुराने जीन्स पर हम जो गाने सुन रहे हैं उनमें से ज्यादातर डायरेक्टर राज खोसला साहब की फिल्मों से थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज खोसला साहब अपने दोस्त देवानंद के सुझाव पर अपना डायरेक्शन का करियर उन्होंने 1951 में गुरुदत्त साहब को असिस्ट करते हुए एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया। अपनी पहली फिल्म उन्होंने 1955 में डायरेक्ट की जिसका नाम था मिलाप। वो इतनी नहीं चली लेकिन उससे अगले साल 1956 में CID फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके बाद इस जॉनर में, डार्क फिल्मों के जॉनर में, राज खोसला साहब ने कमाल कर दिया। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म 1989 की नकाब फिल्म थी। उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने राज खोसला नाम से एक स्टैम्प भी इशू किया था। राज खोसला साहब ने जिस तरह से इंडियन सिनेमा में डार्क फिल्म्स को डिफाइन किया, आगे चलकर बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स ने उनसे इंस्पिरेशन ली। डायरेक्टर्स लाइक महेश भट्ट एंड खुद राज खोसला साहब के बेटे मिलन लुथरिया। इन डायरेक्टर्स की फिल्में देख लें आप, राज खोसला साहब की बहुत सी छाप देखने को मिलेगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अब आपसे होगी मुलाकात कल यही मिर्ची पर। जाने

0: permite.
1: Escabala, escabala, sacabala. Rabala. Burga, burga. Na viva la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: हाँ जी,
3: ये एक सेकंड, ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, अगर

0: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
1: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटी चुप।
0: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
1: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी आप होल्ड करेंगी, एक सेकंड सर, आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
0: नहीं हाँ, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
1: एक सेकंड, इधर आओ हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई चीजी लाई, हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
0: तो उतार लीजिए उसको।
1: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
0: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
1: अच्छा ये बेब है, एक सेकंड
0: डायपर, देखिए सुसु करा होगा उसमें, देखिए।
1: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है, चल
0: उतार दीजिए।
1: एक सेकंड उतार दिया मैं जी। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो।
0: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
1: हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
0: और मैं पागल हूँ, ओह नो।
1: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Radio Mirchi, it's hot.
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: क्यों मारा? क्यों मारा?
2: क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों
3: मेरी भैंस

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है हर घर का ये

0: Mirchi. Isca bana, usca bana, saca bana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
1: है? मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल
2: गया सर, इसका हीरोइन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हीरोइन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
3: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: रहे थे।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: क्या सचमुच रंगों की ऊर्जा हमारे मूड, सोच और वाइब्रेशन को बदल देती है? आइए इसे समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
5: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, हाउ आर यू?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज सुबह जब मैं तैयार हो रहा था आने के लिए और मैं अपनी शर्ट निकाल रहा था, तो मेरी अलमारी में मुझे काली रंग की शर्ट दिखी, तो मैंने उसे पहन ली। और जब मैं पहन रहा था तो मेरे दिमाग में अनायास ये ख्याल आया कि सिस्टर हमेशा व्हाइट में रहती हैं और मैं काले में रहूंगा, और सफेद और काले का ना अजीब सा एक मेलजोल कह सकती हैं, रिश्ता कह सकती रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें बोला जाता था कि सफेद यानी कि सब कुछ सही है, और काला इसलिए काला धन भी कहते हैं, तो काला मतलब गड़बड़ है कुछ। तो मैंने कहा ये एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि सफेद के मायने क्या होते हैं, जैसे सफेद पोशाक आप पहनती हैं, कई लोगों मैंने देखा है, और काले के मायने क्या होते हैं।
5: सी, कलर की एक एनर्जी होती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। नॉर्मली जब हम कलर की बात करते हैं तो व्हाइट को हम पीस से, प्योरिटी से कई बार एसोसिएट कर देते हैं। दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी पीपल हु आर ऑन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी माइट वुड लाइक टू वेयर व्हाइट, क्योंकि उनको वो पीस और प्योरिटी की फीलिंग आती है। बट अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि एनीबडी हु इज वेयरिंग व्हाइट वो अंदर से भी व्हाइट है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आपकी ड्रेस व्हाइट हो सकती है तो भी आपकी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है।
4: जी,
5: कभी कभी आपकी ड्रेस ब्लैक हो सकती है तो भी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत प्योर और पॉजिटिव हो सकती है,
4: क्योंकि ये सिर्फ पहनावा है।
5: हाँ, उसका लिटिल बिट इफेक्ट होता है हर चीज का। एनीथिंग दैट इज मटेरियल, उसकी अपनी एक एनर्जी होती
4: है,
5: चाहे वो होम है, फर्नीचर है, रिंग है, कपड़ा है, लेकिन बहुत लिमिटेड होती है।
4: जी,
5: अगर आप उस एनर्जी फील्ड में आते हैं थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिलता है, बट नॉट टू एन एक्सटेंट कि आप सोचे कि मैंने ये पहन लिया या मैंने यहाँ रहना शुरू कर दिया
4: तो उससे मेरी एनर्जी बदल जाएगी।
5: नहीं, टेम्पररी हो सकता है। कईयों को ऐसा लगता है कि हम बहुत पीसलेस हैं, तो चलो आश्रम में जाकर के रह लें। थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। एवरीथिंग कैन कंट्रीब्यूट टू योर एनर्जी, बट उसका बहुत ब्रीफ पीरियड होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो विद इन है, और उसका जो सोर्स है वो आपके थॉट्स है।
4: बिल्कुल,
5: सो एवरीथिंग कैन ट्रिगर, लेकिन दैट मे नॉट बी द सोर्स।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या मासूमियत का रंगों से कोई गहरा रिश्ता होता है? आइए मिलकर जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि कई बार जो स्पिरिचुअल पाथ पर निकलते हैं वो सफेद पोशाक पहनते हैं, और ये कई बार मैंने देखा है, और वो कारण आप कह रहे हैं कि कनेक्शन विद द डिवाइन, कहीं ना प्योरिटी से, होलीनेस से भी हम इसको लिंक करते हैं। मैंने देखा है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके यूनिफॉर्म में सफेद शर्ट या हमेशा होती है, तो इनोसेंस का भी इससे बहुत लेना देना होगा मेरे ख्याल से।
4: सी, कलर को देखकर आपको जो फील होता है, कई बार व्हाइट को देख करके आपको इनोसेंस, पीस, प्योरिटी फील होता है। डव भी आप देखते हैं कई बार, व्हाइट सिंबॉलिक है, बेसिकली इट इज जस्ट अ सिंबल। फॉर सम पीपल इट कुड एक्ट डिफरेंटली ऑल्सो, क्योंकि कई ऐसे भी कहते हैं कि व्हाइट को देख करके मरने पर लोग व्हाइट पहनते हैं कई बार,
3: बिल्कुल।
4: तो वो कहते हैं क्यों व्हाइट पहनते हैं, कोई मर गया क्या, इन द सेंस। सो फॉर सम पीपल इट मे नॉट बी पीस प्योरिटी ऑलवेज, लेकिन फिर आप डॉक्टर को देखते हैं, नर्स को देखते हैं, देयर ऑलवेज इन व्हाइट मेजोरिटी प्लेसेस में। अगेन कलर को देखकर आपको कई बार लगता है ये सेवियर है, कंपैशन की फीलिंग आती है। सो आई पर्सनली फील कि आपके मन में आप उस कलर से कैसे एसोसिएट करते हैं। अगर आपके मन में वो कलर के प्रति ग्रीफ है तो शायद आपको वो चीज की फीलिंग न आए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या हर रंग अपने अंदर एक खास एनर्जी छुपा कर रखता है? आइए इस दृष्टि को जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरा मकसद आप जो कह रही हैं वो तो मेरे दिमाग में था कि हाँ, नेचुरली जो पहनावे से फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये था कि कहीं ना कहीं सफेद और काला एक ही चीज के लिए दो अलग जगहों पे यूज किया जाता है, तो क्या ये फाइनली एक ही कलर है और इसके मायने सेम है? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते हैं कि काले का मतलब ये भी होता है पावर, और ये तो होता ही है, काफी लीडरशिप रोल्स में इसलिए पहना जाता है, सिक्योरिटी में पहना जाता है, सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन का भी मतलब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी होता है कि आप मटीरियल दुनिया को रिजेक्ट करके स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जा रहे हैं।
4: सफेद को भी इसी के लिए करता है कि आपके मन में आप उस कलर को कैसे एसोसिएट करते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड, आपने जब डिफरेंट ट्रेडिशंस की बात करी, रिलीजन की बात करी और अपब्रिंगिंग में भी, आपके मन में वो कलर का क्या एसोसिएशन है, यू विल फील दैट वे।
3: सही बात है।
4: मना हो सकता है कि अगर आपने हमेशा व्हाइट को, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में जाते थे और हमने हमेशा सभी को व्हाइट पहने हुए देखा, एंड देन दैट इज वेयर वी हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ पीस, तो व्हाइट पहनने की दिल हो जाती है। बट इफ यू बीन टू अ गैदरिंग जहां पर सबने व्हाइट पहना हुआ था पर बहुत ग्रीफ था, बहुत सोरो था, सो समवेयर यू नो वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं लेकिन हमें व्हाइट पहनना नहीं अच्छा लगता। बाकी सब कुछ ठीक है, हमें आना अच्छा लगता है, हमें मेडिटेशन अच्छा लगता है, बट हमें व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगता है। समटाइम्स आई वंडर कि वही व्हाइट जैसे आपने कहा किसी को पीस की फीलिंग देता है, पर देयर आर पीपल वो नहीं पहनते, उनको गैदरिंग में दे विल वेयर अ लाइट कलर, पेस्टल कलर, पर वो व्हाइट नहीं पहनते हैं क्योंकि उनके मन में जो व्हाइट है दैट इज एसोसिएटेड विद
3: ग्रीफ,
4: पेन, सोरो एंड ग्रीफ, सो दैट इज ओके आई थिंक।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बरकत नहीं बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या गंडा लेकर जाएगा?
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirch.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या रंग हमारी आइडेंटिटी, चॉइसेस और पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा कुछ बता देते हैं? आइए मिलकर समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप कह रही हैं कि इसके मायने ज्यादातर जो एक्सपीरियंसेस हमारा उसके
4: हैं,
3: लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे जो हैं, वो सफेद या गेरुआ ही पहनते हैं द वर्ल्ड ओवर, कहीं ना कहीं तो हमने कलर को मायने दिया है।
4: कलर का मायने तो है ही, और इसीलिए मेजोरिटी वो करती भी है, लेकिन एक चीज सबके लिए सेट रूल हो नहीं सकता, बिकॉज आई टोल्ड यू एक्सपीरियंस अलग है। बाकी तो व्हाइट कलर को मेजोरिटी लोग दे विल व्हाइट फील करते, पीस है, प्योरिटी है, वही उनके मन में आता है।
3: तो रंग है वैसे ही रहने दें, हम बिना सोचे निसंकोच पहने, कोई दिक्कत नहीं है,
4: जो आपको अच्छा लगता है
3: वो पहने।
4: अ लॉट ऑफ पीपल वेयर व्हाइट बिकॉज दे फील गुड, ऐसा नहीं उनको पहनना पड़ता है। हमने अपने जगह पर भी देखा है, सी लॉट ऑफ अस हु आर सरेंडर्ड एट द सेंटर वेयर व्हाइट बिकॉज इट इज आवर ड्रेस, पर जब कोई स्टूडेंट आना शुरू होता है वो एक घंटे के लिए आता है मेडिटेट करके या जो स्पिरिचुअल क्लासे करके चला जाता है, वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी सी कि जब वो क्लास में आता है दे स्टार्ट वेयरिंग व्हाइट, किसी ने उनको नहीं बोला होता,
3: लेकिन एनवायरमेंट ही ऐसा है कि उनकी उनका मन हो
4: मन
3: गया
4: कर जाता है। कई बार हम पूछते भी हैं तो कहते नहीं हमें भी मन किया, सो दे विल बिगिन लाइक अच्छा संडे है आज पहनते हैं, अच्छा थर्सडे है दो दिन पहनते हैं, अच्छा आज कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है पहनते हैं, एंड ग्रेजुअली दे स्टार्ट वेयरिंग इट डेली लाइक अ ड्रेस, ऐसे करके नोबडी हैज एवर टोल्ड देम टू डू दैट। उनको अच्छा लगने लग जाता है बिकॉज दे फील समथिंग, जैसे कहा कलर की एक अपनी एनर्जी होती है, एंड एट द सेम टाइम जब कोई नया आता है तो उनको लगता है शायद ये कंपल्शन है, तो कहेंगे हमें आना है तो व्हाइट पहन कर आना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर सबने तो व्हाइट पहना हुआ है, एंड दैट्स वी आल्सो रियलाइज दैट यू नो स्लोली पीपल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दैट कलर बिकॉज़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ पीस इन दैट एनवायरनमेंट, तो वो आपको अच्छा लगने लगता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
6: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
10: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी, हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर शरीर सिर्फ एक बाहरी कॉस्ट्यूम है तो इसके पीछे छुपा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या कहना चाहता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, इस पे एक अटपटा सा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे आपके आश्रम में हम जाएं, सब सफेद पहन रहे हैं, कुछ दिनों बाद शायद लोगों का मन हो जाता है उसी एनवायरनमेंट में सफेद पहनने का, लेकिन 90s के गोविंदा अगर आते हैं वो हरी मतलब पैंट पहन के और लाल रंग की टी शर्ट, अगर मैं ये पहन के आऊँ तो ऐसा तो नहीं कि लोग जज करेंगे या वहां से मुझे निकाल देंगे?
4: स्पिरिचुअलिटी की जो बेस्ट चीज है, जो होना चाहिए, कि आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सी, बॉडी एक एक्सटर्नल कॉस्ट्यूम की तरह है। द होल आइडिया इज कि आप उसके बियॉन्ड देखते हैं सोल को। और वो हर सोल सेम है, चाहे उसने कोई भी कलर पहना हुआ है। हर एक को पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए। आई रिमेम्बर दिस वन ब्रदर शेयरिंग विद मी, उनका नाम ब्रदर चार्ली, एंड ही इज नाउ टेकिंग केयर ऑफ द होल ऑस्ट्रेलिया, अपने जो सेंटर्स हैं। एंड ही केम इन द ईयर 73-74 इन ऑस्ट्रेलिया, इन लंडन, टू वन ऑफ द सेंटर्स। तब हमारी सीनियर सिस्टर थी, जैसे तब हैप्पी मोमेंट चल रहा था।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: तो कहते जिस समय हम आए, वी हैड लॉन्ग हेयर, वी हैड वेरी लूज क्लोदिंग, एंड the sister who met them, he said, we for the first time we felt ki there was somebody who didn't look at us but looked at something beyond us.
3: सही बात है, आभूषण पे नहीं लेकिन अंदर देखा।
4: पर वो चीज उनको फील हुई, उनको वो चीज फील हुई कि किसी ने मुझे जज नहीं किया। एंड इन फैक्ट ही सेड कि अभी हमें थोड़ा ही समय हुआ था रेगुलर क्लास में आते हुए, ही वाज 23-24 एट दैट टाइम, वेरी यंग। और तब अपना एक ही सेंटर था लंदन के अंदर, ब्रह्मा कुमारीज का एक छोटा सा सेंटर था। एंड द सीनियर सिस्टर हु वाज कॉल्ड दादी जानकी, शी इज नो मोर, शी सेड सारे विश्व में सेवा होगी। एंड ही वेरी इनोसेंटली लुक्ड अप एट हर एंड शी सेड, एक सेंटर है लंदन में, आप कहते सारे विश्व में सेवा होगी, कौन करेगा ये सारे विश्व में सेवा? एंड शी लुक्ड एट हिम एंड शी सेड, तुम करोगे। विद दैट कन्विक्शन एंड इट दैट केम ट्रू, मैंने वो छोटे से सेंटर में जो भाई बहने थे, आज वो विश्व के कोने कोने में हैं, दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। सो आई थिंक जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, अपलिफ्टेड होते हैं, वो नहीं देखते आपके एक्सटीरियर को, दे सी यू द सोल एंड दे सी योर पोटेंशियल। और उनकी जो एक एनर्जी है, उनका देखने का तरीका है, जिसको हम कहते हैं दृष्टि, परसेप्शन, यू डोंट सी, यू परसीव। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो छिपी हुई आपकी विशेषता होती है उसको उजागर कर देती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ఫ్యాక్టరీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
1: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్. कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
5: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू.
4: Renew?
5: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
4: What better way to celebrate than with something timeless?
5: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, निखिल पुणे से लिखते हैं कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है, जिसके कारण मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने समाज में इज्जत खो दी है, स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और अपने परिवार के साथ रिश्ते मैं कैसे ठीक करूं?
4: इंटरकास्ट मैरिज करना कुछ गलत नहीं है, दिस इज व्हाट आई थिंक।
3: हाँ जी,
4: लेकिन इतना जरूर है कि वो थोड़ा एफर्ट कर सकते थे कि मैरिज होने तक अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते, माना उनकी दुआओं से अगर कोई कार्य होता है तो वो इजी होता है। कभी कभी हम कर जाते हैं तो उस चीज का जो दुख है, जो दर्द है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भले एक, जो लोग सुन भी रहे हैं, भले एक साल भी लग जाए, कुछ मास भी लग जाए, ट्राई करें। आपके पेरेंट्स के लिए आपकी खुशी से बढ़कर के तो और कुछ नहीं है।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन वो उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज होने में वो ऑन ऑफ का तो बटन है नहीं कि आज आपने बोला, लेकिन आप कहते रहेंगे, बार बार बात करेंगे, अपसेट नहीं होंगे, तो आपकी खुशी के लिए वो धीरे धीरे उस चीज को स्वीकार जरूर करेंगे। दैट इज फर्स्ट थिंग, कि उनकी दुआओं से करें। गलत नहीं भी वो चीज, आप कई बार कहते ना सही है, मैंने तो कर दिया। सही होते हुए भी सर्व का साथ होना, सर्व का सहयोग होना जरूरी है, सर्व की दुआएं होना जरूरी है। अब अगर हो गया है और वो नाराज है, कोई बात नहीं, आप फिर भी उतने ही प्यार से उनसे मिलिए, उतने ही प्यार से बात कीजिए, अपनी हर जिम्मेवारी निभाएं, धीरे धीरे वो हील हो जाएंगे, बिकॉज नाउ दे रियली हर्ट। गिव देम सम टाइम टू हील, और आपकी गुड विशेस, आपकी अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट उनको हील करेगा। इसको हल्का नहीं समझा, मैं लगता मैं ही करे जा रहा हूँ, मैं ही करे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। एक बार किसी ने कहा लव इज द बेस्ट मेडिसिन, तो उसने कहा मैंने ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है कुछ, तो उसने कहा इंक्रीज द डोज।
3: वेरी नाइस, ब्यूटीफुल।
4: ये ऐसी मेडिसिन है, काम ना करे ऐसा होता ही नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू इंक्रीज द डोज, समटाइम्स इट टेक्स टाइम। आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बच्चे से ज्यादा किसी से प्यार नहीं होता, पर इसमें बहुत जरूरी है। हम कई बार थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, फिर वो रिश्तों में बहुत दूरी आ जाती है, वो नहीं करना चाहिए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Namaskar. आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: राजेंद्र तपाड़िया जी हैं, पुणे से लिखते हैं कि रूप पैसा या सत्ता का अहंकार तो समझ में आता है, लेकिन क्या त्याग करने वाले भी अहंकारी हो सकते हैं? और अगर होते हैं तो हमें वो अहंकार दिखता क्यों नहीं है? क्लियरली इन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात की है जो शायद उनको
3: दिखता है ना, क्यों नहीं दिखता है? इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में कहते हैं त्याग का भी त्याग।
2: हाँ, त्याग का भी त्याग। वाह,
3: त्याग, क्योंकि हम कई बार जब एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं तो हम अपनी वीकनेसेस का त्याग करते हैं।
2: हाँ,
3: फिर हमें उसका अभिमान आ जाता है।
2: हाँ, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया,
3: मैं बहुत टॉलरेंट हूँ।
2: हाँ।
3: ये मैं अंदर बहुत सहन शक्ति है।
2: हाँ।
3: मेरे अंदर बहुत नम्रता है।
2: हाँ।
3: ये मैंने किया।
2: हाँ।
3: ये मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता था। सो यू कैन, यू नो, आपने जो अटेन किया, जो एक्चुअली प्रभु प्रसाद है।
2: हाँ।
3: मतलब वो एक गिफ्ट है, बिकॉज यू रिमेम्बर्ड गॉड, वो चीज आपको मिली, वो स्पेशलिटी मिली, वो विशेषता आपको मिली, वो वीकनेसेस आप त्याग कर पाए। लेकिन उस चीज में, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि होना तो चाहिए निरंकारिता, ईगोलेस, ह्यूमिलिटी, पर उस चीज का भी अहंकार आ जाता है। एंड इट इज वेरी वेरी विजिबल। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आध्यात्मिक जगहों पर भी, स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी आप देखेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स में भी देखेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो कार्य पहले कौन करेगा, या नाम पहले किसका लिखा गया, या आगे किसको बिठाया। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं उस चीज का अभिमान है, हमारी पोजिशन का या हमारे ओहदे का। तो जो भी मिला है, जो भी हमने अक्वायर किया है, उसका भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं प्रभु प्रसाद या प्रभु वरदान है। ईगो में हमेशा होता है पहले मैं, ह्यूमिलिटी में हमेशा होता है पहले आप। तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। पर व्हेन आई एम जजिंग माई सेल्फ कि अगर मैं पहले हूँ तो मैं बड़ा हूँ, तो फिर आपको देखकर लगेगा कि ये तो सन्यासी है, इन्होंने तो सब कुछ छोड़ा है, फिर इनको इस चीज का क्यों है? तो आ जाता है, विच इज नॉट राइट। इसलिए त्याग का भी त्याग चाहिए, विच मीन्स जो चीज आपने छोड़ दी है या जो क्वालिटीज आपने अक्वायर किया, उसका भी आपको अंदर में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए यही चीज बार बार याद रखनी कि ये भी एक मुझे भगवान से मिली हुई विशेषता है। करण करावन हार वो है, प्रभु वरदान है, दैट कीप्स यू ग्राउंडेड एंड हम्बल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ह्यूमिलिटी इज द स्वीटेस्ट क्वालिटी, इट इज
2: द मोस्ट डिफिकल्ट वन।
3: ईगो और ह्यूमिलिटी ही है, बना वो ब्रिज है बीच में। आपकी जर्नी जो शुरू होती है, इट इज फ्रॉम ईगो कॉन्शियसनेस टू बिकमिंग हम्बल। और उसमें ये वाला बात जरूर आती है जो वो कह रहे हैं, डेफिनेटली वो भी इस यात्रा पर होंगे शायद, कि वो जो बीच में आ जाता है, कि उस जर्नी के बीच में जो अक्वायर किया उसका भी अभिमान आ जाता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. Utho, stretch karo, pretend your camera is off even when life's camera is always on. Because Mirchi Mornings jo hai wo officially shuru ho chuka hai. Main bole to Priscilla is already in session. Main ho tumhari friendly neighborhood RJ. Bringing you your daily dose of Bollywood ka tadka, thodi si gossip, yahan wahan ki baatein, around the world ki khabrein, thoda sa nostalgia and a lot of Mirchi dar bangers. Taki tumhare pure din ki energy jo hai perfectly set. हो जाए अभी फिलहाल सुबह 8 बज के कुछ टाइम ही हुआ है टू ऑल माई देसीज आउट देयर लिसनिंग टू मी आई नो द रूटीन एक हाथ में कॉफी है एक आंख तुम्हारी लैपटॉप पर है दूसरी आंख घर के कामों और बच्चों पर है एक हाथ है तुम अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो और दोनों कान फिलहाल यहाँ पर मेरे पास है तो अभी चिपक के बैठे रहने का यहीं पर कहीं जाने का नहीं एक्चुअली जा सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033 647244 Go and drop me a hi and filhal stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Buscaba la, buscaba la, sacaba la.
1: ¡Rápala!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: ¿Aló?
3: ¡Café, ayer! ¡Aló, aló! ¡Es el radio que ya tenga! ¡Aló, volría, ayer! ¡Coy, tú te vino, tío! ¡Mene, mana, mía, viví, me chacaró, ya te! ¡Ay, café! ¡Meri, bat, son, qué! ¡Aló, aló! ¡Mene, mana, ya el rat, me chacaró, hogué, todo, bot, cam, se, cam! ¡Bat, meri, son, meri, bat, meri, bat, sonó!
2: ¡Aré, a poco, galat, se, mi, eh! ¡Me, a ti, vais, me, por río! ¡A ti, se, galat, number, la, ya, que, siga!
3: ये एक सेकंड तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ
2: क्या आप पागल हैं क्या
3: पागल आप है कि पागल आप है पागल आप है
2: थे क्या पता नहीं क्या है अपनी बोले चले जा रहे थे
3: बोले चले जा रहे हैं बकवास कम करिए आप हैं किधर भागी है
2: हेलो
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया फोन मत काटना बड़ी मुश्किल से मिलता है
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या आप बुरा ना माने मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए
3: आज के बाद घर से गए आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
10: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
11: Yeah, Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
12: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Constantini and much more.
11: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
13: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17.

0: South Paramus, New Jersey, or shop online at italmodfurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
4: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
3: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali and music by A.R. Rahman.
5: Starring superstar Diljit Dosanjh along with Sharvari Wagh and Vedang Raina.
4: ये प्यार जहर की तरह होता है।
3: Releasing 12th June in cinemas near you.
4: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से भरने भी नहीं देता।
1: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. This is Priscilla with you on Mirchi Mornings. और अब तुम्हारा डेली टाइम ट्रैवलिंग का टाइम हो चुका है. 1692 में डार्क चैप्टर ब्रिजिट बिशप बिकेम द फर्स्ट पर्सन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द सालेम विच ट्रायल्स. Fast forward to 1752. One uncle took DIY science too seriously. Benjamin Franklin flew a kite in a thunderstorm and proved lightning is electricity. 1935 mein Alcoholics Anonymous yani ki AA was founded. Then 1963 mein Equal Pay Act signed in the US. And 1967 mein the Six-Day War ended with a ceasefire. Proof that even after conflict, people can still look for a way forward. Toh aaj ke din ki ye sari uplabdhiyan thi इन हिस्ट्री. फिलहाल फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स और तुम जाने वाले हो इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो करने के लिए. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. This is Priscilla on Mirchi Mornings. और अब आज पता करते हैं बॉलीवुड में क्या चल रहा है. सो एक्टर हर्षवर्धन कपूर, यस अनिल कपूर के सन, रिएक्टेड आफ्टर पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट ही हैड स्टेप्ड अवे फ्रॉम एक्टिंग. बिकॉज स्टैट्स के हिसाब से 4 फिल्म्स की है उन्होंने और एक वेब सीरीज की है इन टोटल 10 years. But Harsh basically said, अरे भाई, not everyone runs on bulk upload mode. उन्होंने clarify किया ही, he hasn't stepped back at all. People are just used to actors doing multiple projects every year. And then he pointed out that films like Bhavesh Joshi superhero takes years to make. Exactly. और वो years हो चुके हैं. It's a good way of saying कि फिलहाल मेरे पास movies हैं नहीं. आई रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, लेकिन इतनी कम फिल्म्स भी नहीं बनानी चाहिए एक प्रोफेशनल एक्टर को, क्योंकि तुम हर्षवर्धन कपूर हो, आमिर खान नहीं. और इसी बात पर जल्दी से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. This is your trusted source for weather updates. तो अभी वेदर का हाल चाल पता कर लेते हैं. टेम्परेचर फिलहाल इज सिटिंग एट 66 डिग्रीज फारेनहाइट. क्लाउडी वाइब्स तो चल रहे हैं और बड़े तरीके से सॉफ्ट लॉन्च किया है हवा ने टेम्परेचर को, विच इज गोइंग टू फील लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट. सुबह 9 बजे के आसपास थोड़े से बादल छट जाएंगे, पार्टली क्लाउडी स्काई हो जाएगा, सन की एंट्री हो जाएगी उस टाइम तक. और आज का टेम्परेचर का रेंज है 65 से लेकर 87 डिग्रीज फारेनहाइट. एंड हेड्स अप बिकॉज इट्स गोइंग टू फील लाइक 65 से लेकर 86 डिग्रीज फारेनहाइट. सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. एंड फटाफट से मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि बाहर निकलते टाइम आज लेयर के प्लेयर बनना, SPF 50 +++ लगाकर ही बाहर जाना. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज देयर इज अ हीट एडवाइजरी अलर्ट till 11 a.m. tomorrow. यानी कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ने वाली है. रेन लवर्स डोंट गेट टू एक्साइटेड. लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज 0 मिलीमीटर्स ऑफ रेन, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में 5 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 5. इट्स जस्ट इनफ टू डिस्ट्रॉय योर हेयर स्टाइल बट नॉट गुड इनफ टू कैंसिल योर प्लान्स. एंड अगर कंपेयर करें कल से तो सिमिलर हाई टेम्परेचर्स है आज, एक्सेप्ट यस्टरडे स्टार्टेड कूलर एंड टुडे वोक अप विद अ लिटिल बिट ऑफ हॉट एम्बिशंस. सो इसी बात पर फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virba, la murga. Mirchi, murga.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: ये पगला।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
16: Vishal Mishra live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
17: Ek sapna, ek vada. और एक सफर जो दिल को छू जाए।
18: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
17: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
19: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाग एंड वेदांग रैना।
18: ये प्यार जहर की तरह होता है।
17: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
18: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
5: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
5: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
5: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry.
4: हर ड्राइव बनेगी यादगार।
20: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
21: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
20: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
22: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
20: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
23: एक ही होता है।
20: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
24: मिर्ची, फ्रेश माल।
25: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग माई पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सो एक्टर वरुण धवन ओपन अप अबाउट हिज वायरल स्माइल मीम डूइंग राउंड ऑनलाइन। कुछ टाइम पहले उनकी टेढ़ी हंसी जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। ही सेड एक्टर अर्जुन कपूर वॉज एक्चुअली हैप्पी व्हेन वरुण वॉज गेटिंग ट्रोल ऑनलाइन। पीक फ्रेंड्स बिहेवियर, नॉट हेल्पिंग, जस्ट एंजॉयिंग द मिजरी। बट वरुण क्लियर्ड समथिंग अप। अपेरेंटली द वायरल इमेज वॉजंट इवन फ्रॉम बॉर्डर 2। ही सेड द फेस was from ABCD2, the body wasn't his, and the whole thing was AI generated. And then came my favorite line. Varun said after all the trolling, he landed 3 ads. Moral of today's story is, aapke embarrassing moments jo hain, wo kabhi kabhi aapki life ke main important moments ban sakte hain, because they put you right where you ought to be. Well, hum desi bachcho ko to ye baat bahut acche se samajh aati hai, kyunki aakhir aag mein jalkar hi sona sona banta hai, and hero aur सोने की बात हो तो तनिष्क कैसे याद ना आए। Enjoy up to 20% off on diamond value and on making charges of gold jewelry. साथ साथ में 0% deduction भी है on exchange of old gold above 18 carat. Of course, terms and conditions applied है, लेकिन offers बहुत ही yummy और amazing है। फिलहाल तुम्हारे लिए मिर्चीदार bangers भी आने वाले हैं only on मिर्ची mornings. मेरा नाम है प्रिसिला, सुनते रहो मुझे and of course follow करो मुझे insta और x पर। मेरा handle name है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Pretty simple, right? Stay tuned and stay hot.

0: 9:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए. योग कीजिए.
2: विश्व को भारत का उपहार योग है. अच्छी सेहत का आधार. आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें. हर दिन 30 मिनट योगा करें.
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी.
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Inefficient.
8: Very complex.
9: Clumsy hoy.
10: Confusion hi confusion.
5: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
13: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप. शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
14: एब्सोल्युटली. एंड व्हाइल वी आर एट इट आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू.
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
17: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
18: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
19: पहले भी मैं तुमसे मिला.
20: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
21: विशाल मिश्रा.
18: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
22: and SaiUSAInc.com.
23: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
24: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
25: लिस्नर है मैं. बैक टू बैक गाना सुनेगा.
26: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
25: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
27: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Namaste, salam, sat sri akal, and happy birthday to all my birthday babies out there. This is Priscilla with you on Mirchi Mornings. Aur agar aaj tumhara happy wala birthday hai, to you are twinning your birthdays with Hollywood glam queen Elizabeth Hurley. And saath saath mein aaj Kate Upton ka bhi happy birthday, who is a model and actress. And agar tumhara humor thoda sa chaotic hai, to Bill Burr ka bhi aaj happy birthday hai. Bill Burr. Well, mera humor काफी सिक है. टेक पीपल, वीव गॉट सुंदर पिचाई इन बर्थडे स्क्वाड टुडे एंड थ्रोइंग इट बैक. लेजेंडरी एक्ट्रेस एंड सिंगर जूडी गार्लैंड की आज बर्थ एनिवर्सरी है. एंड साथ साथ में म्यूजिक लवर्स, वीव गॉट जोजो एंड फेथ एवंस. तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, तो अपने बर्थडे शाउटआउट्स मुझे भेज सकते हो तुम. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब टाइम आ चुका है सोना और चांदी की खनखनाहट सुनने का, यानी कि रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,130, $4,130 पट रहा है। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं और 2026 के लोवेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट पर हैं। जिनको लगता था गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 0% इंटरेस्ट, 9 मंथ की फाइनेंसिंग, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के 22 कैरेट गोल्ड चेन्स हो, प्लैटिनम की चेन्स हो, 18 कैरेट GI सर्टिफाइड नेचुरल रिंग्स हो, राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें और ज्वेलरी आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाएं और 9 किस्तों में पैसे दें। आइए गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड दैट वाज योर लेटेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: हाँ जी,
3: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटा। चुप,
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड, आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे? एक सेकंड सर, आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी उसका,
2: तो उतार लीजिए उसको।
3: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
3: हाँ, सुसु ही करा। चुप,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आ जरा। देखो, आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: नोनू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ।

0: only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
9: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
10: पहले भी मैं तुमसे मिला।
11: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
12: विशाल मिश्रा
9: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
13: and SaiUSAInc.com.
14: Ek sapna, ek vada. और एक सफर जो दिल को छू जाए
15: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं
14: देखे 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार समय और हौसले से आगे है मैं वापस आऊंगा अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान
16: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना
15: ये प्यार जहर की तरह होता है
14: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू
15: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता
17: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
18: Chamakte Sitare 2026.
17: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
19: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
5: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
4: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
6: अभी न जाओ छोड़ कर।
5: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration Bows, Visa Serve Knows. U.S. and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
11: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: It's 10:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.

0: लगी। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जाने ये कॉफी पीने वाली इंसान को ना सुबह सुबह चॉकलेट मिल्क पीने का बड़ा दिल कर रहा था।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. ये मतलब जो यादें हैं ना, ये टेस्ट के फॉर्म में भी आती है। हाँ, मतलब जो खाने का टेस्ट होता है उसमें भी बड़ा तगड़ा नॉस्टैल्जिया होता है। एंड आई ऑल ऑफ अ सडन ना वॉज जस्ट हैविंग दिस अर्ज, दिस क्रेविंग, कि मैं ना किसी तरीके से बचपन के जो चॉकलेट पाउडर्स हम पिया करते थे ना दूध में मिला के, वो वाला दूध पीऊँ। आजकल का वो जो फैंसी चॉकलेट मिल्क है उसकी बात नहीं करी थी मैं, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट चॉकलेट मिल्क जो हम स्कूल जाने से पहले रोज सुबह पिया करते थे, और जो मेरी तलब थी ना वो इतनी तेज थी, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि दूध पिया करती है या दूध पसंद किया करती है, लेकिन बचपन में मैं दूध पिया करती थी, स्कूल जाने से पहले ही रूटीन हुआ करता था। और आज ऑल ऑफ अ सडन सुबह सुबह ना ऐसा फील हुआ कि यार वो सुबह सुबह जो हम स्कूल जाने से पहले चॉकलेट मिल्क पिया करते थे ना, वो पिया जाए, उसका टेस्ट बार बार मेरे मुंह में आ रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस तरीके से किसी खाने की अर्ज होती है, क्रेविंग होती है, जो हमारे बचपन से जुड़ी है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ यादें दे रही है, उसे हम इतना आज पसंद नहीं करते, लेकिन स्टिल ऑल ऑफ अ सडन एक हवा सी आती है और आपको लग रहा होता है कि नहीं यार आज तो यही खाना है और यही पीना है। डीएम करो

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या? हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या आप पागल है क्या?
3: पागल आप है, पागल आप है
2: क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
3: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भाग गया?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गोल्ड प्राइसेस आर

0: Rising, invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुँचती हैं।
5: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
4: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
6: अभी न जाओ छोड़ कर।
5: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
7: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
8: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
7: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
9: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
8: ये प्यार जहर की तरह होता है।
7: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
8: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
10: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા। અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ। અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ। આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી।
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सबको ये तो पता है कि आफताब शिवदासानी की डेब्यू फिल्म मस्त है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि राजपाल यादव की डेब्यू फिल्म भी मस्त ही है।
0: मिर्ची VCR।
1: राम गोपाल वर्मा की मस्त में जब आफताब ने काम किया तो वो मात्र 20 साल के थे। और ये फिल्म आफताब को कैसे मिली पता है? वेल एक्चुअली राम गोपाल वर्मा अर्जुन रामपाल को मूवी में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब यही बात अनुराग कश्यप से कही तो अनुराग ने राम गोपाल वर्मा को बताया कि अर्जुन इज अ बैड एक्टर, विच वॉज अ लाई, क्योंकि वो अर्जुन रामपाल से अपना बदला ले रहे थे और वो भी कॉलेज टाइम्स का बदला, क्योंकि उनके कॉलेज टाइम में अनुराग जिस लड़की को पसंद किया करते थे अर्जुन उसी लड़की को डेट कर रहे थे और ये चीज उनके दिल में काफी सालों तक रही, जिसका सिला ये हुआ कि अर्जुन डिड नॉट मेक इट टू द कास्ट ऑफ मस्त। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मस्त मूवी राम गोपाल वर्मा के एक फेमस एक्ट्रेस से ऑब्सेशन पर बेस्ड है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: प्राण भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
8: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
9: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
10: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
9: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
11: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
10: ये प्यार जहर की तरह होता है।
9: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
10: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो आखिरी समय में चैन से भरने भी नहीं देता।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
15: पहले भी मैं तुमसे
16: मिला। Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
17: Vishal Mishra.
14: Jaitley of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
18: and SaiUSAInc.com.
19: It's 11:30 a.m. Mirchi Time Check.
6: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, Diamond Jewelry Ki First Choice. RK Jewels, Best Quality, Best Price.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च चेस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
5: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मस्त मूवी में आफ्ताब का कैरेक्टर वाज ऑब्सेस्ड विद उर्मिला मातोंडकर का कैरेक्टर, सो मच सो दैट कि वो बंदी को देखने के लिए अपने शहर से मुंबई आ गया था। और जब मूवी रिलीज हुई थी तो हमें लगा था हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, बट गेस व्हाट, ऐसा होता है। ये हरकत इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये स्टोरी है राम गोपाल वर्मा की स्टोरी। और मस्त उन्होंने अपने इसी ऑब्सेशन को लेकर बनाई है। जब वो श्रीदेवी से इतने ऑब्सेस थे कि वो भी श्रीदेवी के घर के बाहर आस लगाए घंटों खड़े रहा करते थे, तो अनलाइक द मूवी की स्टोरी, उन्हें आफ्ताब के कैरेक्टर की तरह श्रीदेवी तो नहीं मिली, लेकिन शायद अपने दिल को वो खुशी देने के लिए जो जीवन में नहीं मिली, उन्होंने आफ्ताब और उर्मिला के कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग बताई दी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: क्या आपको लगता है इग्नोरेंस इज ब्लिस? सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हम जैसे जैसे बड़े होते गए ना, जैसे जैसे चीजें हमारे आगे अनफोल्ड होती गई हैं, वैसे वैसे हम समझदार होते गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि हर एक चीज पता होनी भी क्या ही जरूरी है। कुछ चीजों की सच्चाई जब नहीं पता होती ना, तो एक होप जरूर होती है। मैं ना आपसे अपने बचपन की एक बात शेयर करती हूँ। बचपन में माई फादर यूज टू टेल मी अबाउट अ फेरी गॉड मदर हु ऑफ कोर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन गुड, ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि जब मुझे ये पता था कि आई हैव अ फेरी गॉड मदर, आई यूज टू फील वेरी सिक्योर्ड, वेरी प्रोटेक्टेड। और मेरे डैडी वो रात में ना मुझे फेरी गॉड मदर के नाम पर दूध पिला दिया करते थे, सोने से पहले चेंज करके ब्रश करके सोने की आदत दिला दिया करते थे, और अक्सर सुबह मुझे मेरे तकिए के नीचे कभी गिफ्ट्स तो कभी चॉकलेट्स मिला करती थी। थैंक्स टू फेरी गॉड मदर। यू नो, आई स्टिल वुड वॉन्ट टू बिलीव इन अ फेरी गॉड मदर। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए ना, हेंस इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं ना, सही कहते हैं। लेकिन आज भी ना इस बड़ी सी दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया बनाकर ना हम भी खुश रह सकते हैं, जहाँ जरूरी नहीं कि हर बात को सीरियसली लिया जाए और हर चीज का पर्दा फाश किया जाए। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, और ये गाना भी वही कहता है कि कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ। ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना है?
1: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
1: है। मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी।
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
11: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
10: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
12: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
11: ये प्यार जहर की तरह होता है।
10: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
11: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
13: सर्चिंग द बेस्ट डायमंड ज्वेलरी ऑन

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV ke antenna.
2: यादों को चिट्ठी।
1: हालांकि आजकल हमारे घरों के अंदर स्मार्ट टीवीज, वाईफाई, सेट टॉप बॉक्सेस इन सब की भरमार है, लेकिन फिर भी इन सारी सहूलियतों की भीड़ में तुम्हारी याद कहीं ना कहीं से निकलकर आ ही जाती है। रियलाइज होता है कि आज जो इतने आसानी से बैठ के हम टीवी देख रहे होते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, एक जमाने में हम परेशान हो जाया करते थे अगर गलती से कुछ चंद बूंदे भी पड़ जाया करती थी या हवा तेज हो जाया करती थी। दिल में एक ही डर होता था कि ओ नो, अभी तो वो पिक्चर शुरू होने वाली है जिसका कि हमने पूरे हफ्ते इंतजार किया है, वो DD1 पर आएगी, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ही आंधी तूफान के आसार कैसे आ गए, अब एंटीना हिलेगा, सिग्नल डुलेगा और हमारे प्लान पे रायता ढुलेगा। और जब बारिश आया करती थी ना, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर पन्नी चढ़ा दिया करते थे। आई डोंट नो इफ इट एवर मेड सेंस और नॉट, बट हाँ, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा हुआ करता था गालिब। कभी तुम टी शेप में आते थे तो कहीं तुम गोल वाले शेप में आते थे, और इनफैक्ट जब तुम गोल वाले शेप में आए तो मुझे लगा ओहो, ये तो कुछ प्रीमियम टाइप का है जो हमारे यहाँ पे लगा है, क्योंकि सबके यहाँ तो टी शेप में है, हमारे यहाँ गोल वाले शेप में है। अक्सर ऐसा भी हुआ करता था कि छतों की सफाइयाँ होती थी तो पुराने एंटीने जो टूटे फूटे या तो उड़ के कहीं और से आए होते थे या हमारे ही घर के जो कभी टूट गए होते थे और रिप्लेस हो चुके होते थे नए वालों से, वो छतों की गंदगी के अंदर निकल निकल के आया करते थे। तुम भी क्या कमाल की चीज थे यार, बस एक बार छत पे टंग जाया करते थे तो ना जाने क्या क्या कैच करके हमारे टीवी पर दिखा दिया करते थे। तुम्हारी टेक्नोलॉजी मैं आज तक तो नहीं समझी थी, मगर हाँ, हमने तुम्हारी टेक्नोलॉजी का इंसान के साथ बड़ा इस्तेमाल किया है। नीचे से एक जना आवाज दिया करता था कि हाँ हाँ हाँ, आया आया आया, नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, और ऊपर बैठा एक इंसान ये मैसेज लिया करता था जो कि तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा होता था कि किस तरफ तुम्हें घुमाए, किस दिशा में तुम्हें लाए कि हमारा जो नेटवर्क है टीवी का वो आ जाए किसी तरीके से। थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, और फिर फाइनली एकदम बढ़िया होकर स्क्रीन हो जाती थी हमारी एकदम ढाई। तुम्हारे सहारे हमने महाभारत, शक्तिमान, चित्रहार, फ्राइडे की फिल्में, सैटरडे की फिल्में, ये सब बिना हिले डुले देखी है। आज जब एक रिमोट से सैकड़ों चैनल्स बदल जाते हैं ना, तब तुम्हारी वो सादगी और तुम्हारा वो चैलेंज बड़ा याद आता है। तुम्हारे बिना तो टीवी देखना अधूरा सा लगता था। अब तो ना छत पर वो दौड़ भाग रह गई है और ना ही वो पिक्चर आ गई की खुशी रह गई है। वो एक्साइटमेंट ही अलग हुआ करता था यार, जब एक पिक्चर देखने के लिए इतनी मेहनत और हार्ट ब्रेक से डील करना पड़ता था। आज तो सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है और शायद इसी वजह से आज उसकी इतनी अहमियत भी नहीं है। तुम सिर्फ हमें टीवी नहीं दिखाया करते थे और ना ही सिर्फ हमारे नेटवर्क और सिग्नल्स को टीवी से जोड़कर रखते थे, तुम तो हमारी पूरी फैमिली को जोड़े रखते थे। और सिर्फ फैमिली ही क्यों, पड़ोसियों को भी हमसे जोड़े रखते थे जो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए आया करते थे। तुम्हें याद करती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
9: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
11: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
12: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
14: It's 12:30 PM. Mirchi time check.
15: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels, best quality, best price.
16: Tera kya hoga Kalia?
17: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration Bose, Visa Serve Knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
4: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में यस बॉस से ये जो गाना है ना, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये हम सभी की लाइफ का सच है बॉस। कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: एक दिन आप यू हमको मिल जाएंगे। भले कहावत है, कहते हैं कि लव फाइंड्स यू व्हेन यू नॉट सर्चिंग फॉर इट, यानी कि आपको जब लग रहा होता है ना कि यार अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मतलब प्यार व्यार में मुझे नहीं पड़ना यार, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, ठीक उसी वक्त आपको प्यार ढूंढ ही लेता है। आप नहीं ढूंढते हो, प्यार खुद आपको ढूंढ लेता है, खुद चल के आपके पास आ जाता है। और यही इस गाने का भी फील है, जहाँ पर इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि यार एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था, प्यार भी कुछ ऐसी ही चीज होती है और इतनी खूबसूरत चीज होती है, क्योंकि हम जब सोच रहे होते हैं ना कि यार प्यार व्यार नहीं हो सकता यार, बहुत दिल तोड़वा लिए यार, अब मेरी हिम्मत नहीं है, बस उसी वक्त आपको वो इंसान मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या यूं कहे कि सोचा होगा लेकिन ये भी सोचा होगा कि यार ऐसे इंसान तो होते ही नहीं है। लेकिन सच बात बताओ, ऐसे इंसान होते हैं भाई, सबकी किस्मत में एक बढ़िया इंसान लिखा हुआ है। और तभी ये लाइन आती है कि एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन, और आप खुद से ही कहोगे कि मैंने सोचा ना था। दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में ये पल जल्द ही आए, अगर अभी तक आया नहीं है तो। और इसी के साथ इस दुआ को कबूल फरमाएं और इस गाने पर जाएं, यानी कि ये गाना अब आपके लिए मैं लगाते हुए जा रही हूँ। और आपसे कहती हूँ हमें राय प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi. It's hot.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: आज हम हिंदी फिल्मों के ऐसे वर्सेटाइल विलन की बात करने वाले हैं जो आई एम श्योर सबको बहुत पसंद रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिल्मों में तो ये लोगों को यूं यूं यूं करके मार देते थे और नाम था इनका जीवन। असली नाम वैसे ओमकार नाथ धर था लेकिन फिल्मों के लिए नाम जीवन रख लिया। ये वही जीवन है जो अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपने मैनरिज्म्स और खास करके पौराणिक कथाओं वाली फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाने के लिए जाने जाते।
1: नमस्कार, नारायण नारायण
0: नारायण। करते हैं इनके बारे में कुछ और बातें और इनकी कही बातें सुनेंगे भी पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: बहन जी।
3: हाँ जी।
4: ये एक सेकंड ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
3: आपके घर में कोई नहीं है?
4: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटा चुप।
3: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
4: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
3: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
4: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
3: उतार लीजिए।
4: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
3: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
4: अच्छा ये बेब है। एक सेकंड
3: देखिए, सुसु करा होगा उसने। देखिए
4: हाँ, सुसु करा। चुप,
3: उतार दीजिए।
4: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आ जरा। देखो आंटी कर रही
3: है।
4: क्लैपिंग करो।
3: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
4: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
3: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
4: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
11: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
9: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
14: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
19: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: ये जीवन कितना पुराना है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और हम बात कर रहे हैं एक्टर जीवन की।
0: और एक पुराने इंटरव्यू में, मतलब लेट 70s या अर्ली 80s का ये इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू की होस्ट तबस्सुम जी ने उनसे पूछा था कि भाई आप कौन से पौराणिक टाइम से फिल्मों में काम कर रहे हैं।
2: मैं एक आप बीती सुनाता हूँ। मैं लंदन से बॉम्बे आ रहा था, थोड़ा के बाद मैंने देखा कि एक 8-9 साल का लड़का, वो एक उम्र रसीदा जेंटलमैन को घसीटता हुआ मेरी तरफ ला रहा है। तो मैं जरा चौकन्ना होकर बैठ गया। वो जेंटलमैन ने आकर कहा कि जीवन लाल, ये मारो ग्रैंडसन छे हरसुख, एने पास एक चौपड़ी छे। मैंने ऑटोग्राफ कर दिया। तो हरसुख ने वो चौपड़ी वापस लेते हुए कहा, जीवन अंकल 2 दिन हो गया, हम तुम्हारा पिक्चर वीडियो पर देखा, अमर अकबर अंथनी। जेंटलमैन फरमाए, अरे तू 2 दिन, हम तो जीवन का पिक्चर साल 1935 में 1935 में देखा था, जब तू क्या तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ।
1: जी 1935 में उनकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था फैशनेबल इंडिया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
8: Ek sapna, ek vaada. और एक सफर जो दिल को छू जाए।
9: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
8: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान।
10: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाग एंड वेदांग रैना।
9: ये प्यार जहर की तरह होता है।
8: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
9: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही शायद सोचते थे एक्टर जीवन, क्योंकि जब वो 18 साल के थे, उनके कॉलेज की छुट्टियां वगैरह चल रही थी, तो वो अपने घर से भाग गए थे बॉम्बे फिल्मों में काम करने के लिए। अच्छा, 1981 की एक फिल्म थी बुलंदी, जिसमें जीवन एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर में ही होते हैं, एक फादर प्ले करते हैं, और उनके बेटे जब उनसे आगे पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो ये जीवन जी क्या जवाब देते हैं सुनिए।
1: बेटा पवन, मेरे इरादों पर चूना लगाने की कोशिश मत करो। याद रखो, ज्यादा इल्म इंसान को बुजदिल बना देता है, उसे हर काम बुरा और गलत दिखता है, उसका जमीर दस्तक देता है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, और सारी जिंदगी उसकी कानून से डरते डरते गुजरती है, वो कौड़ी काम का नहीं रहता। अरे मेरी तरफ देखो, मैं बिना पढ़े लिखे कितने मजे में हूँ, कितना रुपया कमाया मैंने, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, आराम से।
0: बड़े आराम से, इतने एफर्टलेसली ये कितने अलग अलग तरह के रोल निभा लेते थे भाई, क्या टैलेंट था है। इनके बारे में कुछ और बातें करेंगे, इनकी कही हुई बातें एक पुराने इंटरव्यू में वो भी सुनेंगे। राइट हियर, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पुरानी जीन्स पर आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल विलन्स जीवन की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई दूसरे किरदारों की गजब बेइज्जती तो वो ऐसे करते थे कि मजा आ जाता था।
1: अरे घनचक्कर,
0: कुछ डायलॉग सुनिए उनके जरा।
1: अबे ओ गधे की औलाद, तेरे बाप ने भी कभी तीर चलाया था? छोड़ दे ये तीर कमान, ये राजाओं महाराजाओं के खिलवाड़ हैं। जा जा जा जा, घटिया काम कर घटिया।
0: जा घटिया काम कर। अच्छा ये वाला सुनिए।
2: हराम खोर, तेल मालिश कर रहे हैं बूट पालिश, हाथों में ताकत ही नहीं है।
0: वेल, इनके कुछ और डायलॉग्स भी और एक पुराने इंटरव्यू में इनकी कही कुछ बातें भी सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: फिल्मों में ये लोगों को बड़ी बेदर्दी से मार देते थे और नाम था इनका जीवन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही जीवन जो जाने जाते थे अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपने मैनरिज्म्स और अपने फेमस किरदार नारायण नारायण नारद मुनि के लिए। एक बार एक लेट 70s या अर्ली 80s का इंटरव्यू होगा, उसमें उनसे पूछा गया था कि ये रिकॉर्ड बनाने वाला किरदार इन्होंने कितनी दफा निभाया है।
1: 49 times। अब ये रिकॉर्ड बने या टूटे या रहे, इसकी तो खैर मैंने कभी परवाह नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में इन फिल्मों में मैंने महामुनि की पब्लिसिटी बहुत कर दी है, उनको जरा मुश्किल में भी डाल दी। मराठी पेपर एक मेरे पास लोक सत्ता, उसमें महाशय ने लिखा है कि अगर आकाश से असली नारद उतर कर पृथ्वी पर आ जाएं और वो जीवन जी की तरह नारायण नारायण नारायण ना बोले, हम समझेंगे कि नारद नहीं है, वो बहुरूपिया है और नारद बनकर हमारे सामने आ गया है।
0: एक्चुअली जब हम नारद मुनि सोचते हैं तो जीवन जी ही जहन में आते हैं। वैसे इस इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने ये किरदार निभाया था तो टोटल नंबर कुछ 61 हो गया था। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ ना सर?
3: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ।
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ। ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना है?
3: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
3: है। मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
3: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
4: सर। इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी जी।
3: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक।

0: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड विलन्स जीवन मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनका रियल नेम ओमकार नाथ धर, 1915 में जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ और जब ये 18 साल के थे ना, जब कॉलेज में थे तो जेब में 26 रुपए लेकर भागकर बॉम्बे आ गए फिल्मों में काम करने के लिए। 1935 की फैशनेबल इंडिया नाम की एक फिल्म से इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। बहुत सारे मेमोरेबल रोल्स इन्होंने निभाए 1986 तक, जिनमें से ऑफ कोर्स सबसे पॉपुलर था पौराणिक कथाओं वाली फिल्मों में नारायण नारायण नारद मुनि का किरदार, और इनको इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनके मैनरिज्म्स के लिए भी जाना जाता था। अच्छा, मुझे जो इनका किरदार बहुत पसंद है ना, वो है अमर अकबर एंथनी का रॉबर्ट। अलग ही स्वैग और स्टाइल था बंदे में। इनके उस रॉबर्ट किरदार के एक दो डायलॉग सुनते हैं।
1: I'm sorry, विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था, बेकार बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है।
2: You bloody fool! रॉबर्ट को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी गोलियों से खेलना पड़ा।
0: कुछ और डायलॉग्स, कुछ और बातें, इनफैक्ट एक पुराने इंटरव्यू से जीवन साहब की बातें सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
8: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
13: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
14: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: क्या स्टाइल, क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या मैनरिज्म्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और हम याद कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट विलन्स ऑफ हिंदी सिनेमा जीवन साहब को। उनके कुछ डायलॉग सुनते हैं, देखे धमकियाँ कैसे प्यार से देते थे।
1: इसी अंधेरे में रहने की कोशिश करो, रोशनी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
0: और घर के गहने वहने सोना तो यूं ही बेच के आ जाते थे।
1: मौसी बहुत अच्छे दाम मिल गए हैं, ये देखो रेखा की कीमत।
0: अपने किरदारों के जरिए काफी अच्छे लाइफ लेसन भी देते थे।
2: वादा पर खुरदार वादे का एतबार समझदार नहीं किया करते।
0: समझे, समझदार बनो, किसी के वादे का एतबार मत करो। बट यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जीवन साहब के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे यहीं पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: हिंदी फिल्मों के बेहतरीन विलन्स या कैरेक्टर आर्टिस्ट में से एक जीवन साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड खास करके उनके मैनरिज्म्स। एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में, लेट 70s या अर्ली 80s का इंटरव्यू होगा, उन्होंने अपने मैनरिज्म्स के बारे में क्या शेयर किया था, सुनिए।
1: ऐसा है ना कि मैनरिज्म का मतलब है कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एक्शन या कोई इस तरह की अल्फाजों की बंदिश जो पब्लिक को पसंद आ जाए। तो अगर वो पसंद कर ले पब्लिक तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, उसे बार बार एक दो चार फिल्मों में और रिपीट किया जाए। हाँ, स्वामी से लेकर कोहिनूर फिल्म तक मेरा मैनरिज्म क्या था, कोहिनूर से लेकर शरीफ बदमाश तक। मैनरिज्म था। और फिर शरीफ बदमाश से लेकर अभी तक। नहीं।
0: वाह, ब्रिलियंट। और उनके इन मैनरिज्म्स को हिंदी फिल्मों के आजकल के जो एक एक्टर हैं, उन्होंने भी काफी कॉमेडी सीन्स में इनको मिमिक किया है। कौन है वो, पता करते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: सुन रहे हैं आप. अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक फॉर द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. इस बंदी का नाम है आरजे कनिका. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं. हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल शाउट आउट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंट डाउन की विद गाना नंबर 10. अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: This song screams that Punjabi aa gaye hain. Hey, Diljit Dosanjh ki awaaz, unki composition. Gaane ka naam hai Dealer. 11 hafton se Punjabi is countdown pe resident ban chuke hain. Pichle hafte se 3 position niche drop hoke Dealer was this week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है. मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था. डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे. अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह. नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है. आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है. ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे. चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर इन हिज ओन राइट. सोचने वाली बात है, ऑल आर्टिस्ट वॉन्ट दैट आइडेंटिफिकेशन, राइट? कितनी बार होता है दैट हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है. बट विद मीका सिंह देयर इज नेवर अ स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेक अवे फैक्टर है. पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है. कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेक अवे फैक्टर होता है. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है.

0: एट आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, नीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज दया द रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: टी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
4: Hello?
5: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत कम से कम। बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
4: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ। आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
5: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
4: क्या आप पागल हैं क्या?
5: पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है
4: क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
5: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी यार?
4: हेलो,
5: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
6: क्या?
4: हेलो,
5: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanika. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाय और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं फॉर आवर सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में 2 बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

Mika ka gana called Something Something. If you're from the 2000s ka generation, you know the impact of this song. Before Mika Singh became voice of Hindi film songs ka anthem, jaise ki Mauja Hi Mauja, Subah Hone Na De from Desi Boys, Aankh Mare from Simba, matlab unki awaaz hum sunte hain aur wo party wali awaaz yaad aati hai. 440 Volt from Sultan. Mika Singh owns all these songs. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनके एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट. I challenge you कि ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द बिगेस्ट पार्टी वॉइस ऑफ आर जेनरेशन मीका की आवाज में. दिस इज समथिंग समथिंग, अ 2006 इंडी पॉप सॉन्ग प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे करेका. एंजॉय.

0: गॉड मीका सिंह योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है कुछ, मतलब नहीं मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना विच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.
2: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए. योग कीजिए.
3: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार. आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें. हर दिन 30 मिनट योगा करें.
2: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी.
4: सेलिब्रेट योगा विथ अस एट 125 राधातन सेंटर, पार्कवे एडिसन, न्यू जर्सी, संडे जून 14, 2026, 10 AM. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 732-470-5598
5: ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट
6: इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड वीगन विजन.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरु.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with 0 deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Aksar jab hum baithte hain, music, movies ke baare mein baat karte hain, har generation ke kuch aise guards hote hain, moral guard bolte hain unko, jo ye baatein shuru kar dete hain ki yaar, aaj ke music mein wo baat nahi hai. आज की फिल्मों में वो बात नहीं है. 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी. अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है. तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना और वो कंप्लेन करते रहेंगे. व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना. मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक. मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग. आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है. इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाय निशान सरकार. We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है. एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन, बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू. What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने फोक म्यूजिक को कि यार ये तो उस जमाने का म्यूजिक है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है. उन्होंने उससे ही आज की लैंग्वेज में बात करके दिखाई. गाना बहुत एनर्जेटिक है लेकिन ओवर द टॉप नहीं है. इट्स एक्सट्रीमली डांसेबल, ग्रूवेबल, लेकिन डांस के लिए नहीं बना है. एंड कोरस में एक ऐसी क्वालिटी है दैट एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स इंडिपेंडेंट इंडियन पॉप म्यूजिक सो एक्साइटिंग. हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार. आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJKaringa ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक्ड इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा। हम हमसे आगे शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर। पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबी ना।
0: मीका सिंह दया दा रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर चोर ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा।
5: तेरे आगे पीछे लंके सुन दोना छोरी का हर।
0: मेश रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
6: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
1: Number 1.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मैं किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया,
1: मतलब पेशाब निकल गया। मैं पेशाब
0: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
1: सर, इसका हीरोइन सर मैच होता है क्या, मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कुछ हीरोइन का भी कुछ होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
1: जी जी,
0: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
1: अच्छा,
0: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
1: क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा।
0: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
1: अभी तो सर लग नहीं रहा, 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
0: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए, और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
1: जी
0: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
1: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
0: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
11: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
12: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
16: It's Vijaya on Mirchi's Immigration Hour, brought to you by the NPZ Law Group, dedicated US and Canadian immigration representation for individuals, families and businesses throughout the US and around the world. And with me is Samantha Oberstein. She's managing attorney at NPZ's Fort Lauderdale office. Welcome, Samantha.
17: Hey, Vijaya. Thanks for having us.
16: Welcome. Thank you for being here. And Samantha, this listener that we have is concerned, and they've heard that they can be asked about asylum during the non-immigrant visa interview. Now, is this true?
17: Yeah, so this is very new. So on April 28th, Department of State released a cable that effective immediately, officers are required to ask 2 questions of every non-immigrant visa applicant. Those questions are, 1, have you ever experienced harm or mistreatment in your country of nationality or last habitual residence?
16: Mm-hmm.
17: And then the second is, do you fear harm or mistreatment in returning to your country of nationality or permanent residence? So applicants are required to respond verbally no to both in order for the visa to be issued. Of course, they need to be honest, but if they say yes or they refuse to answer, the visa will be refused. And officers are being instructed to, quote, rigorously apply mm-hmm. the

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
14: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
13: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
15: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
14: ये प्यार जहर की तरह होता है।
13: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
14: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेंसडे वाइब्स दैट टू फुल ऑन मिर्ची स्टाइल। शमशान दा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका बुधवार की इस खूबसूरत शाम में। वैसे तो यार वेंसडे का फंडा ना बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा फिल्मी हो जाए, थोड़ा सा फंकी हो जाए और बिल्कुल भी बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि यार इसीलिए तो कहते हैं इसे वेंसडे द हम डे। वैसे चलिए आज की जो खूबसूरत शाम है इसे बनाते हैं फुल ऑन पैसा वसूल विद बॉलीवुड गॉसिप, ढिनचैक गाने, फिल्मी फंडे और एक से बढ़कर एक फन फैक्ट्स के साथ। क्योंकि यार अगर आपने कॉफी चाय लाटे या फिर देसी चाय उठा ली है तो स्टीयरिंग थोड़ा संभाल के, क्योंकि तड़कते फड़कते गाने बजने वाले हैं अगले पूरे 4 घंटे आपके लिए और होने वाला है मिर्ची मसालेदार और मेगा एंटरटेनिंग। तो चलिए शो शुरू करते हैं और आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आते रहिए, सेंड मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो बहन जी।
1: हाँ जी।
0: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर आप,
1: आपके घर में कोई नहीं है क्या?
0: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो। एक सेकंड बेटे, चुप।
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
0: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी, चीजी लाएंगी, बेटे चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं नहीं, हाँ इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
0: एक सेकंड, इधर आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो देखो, मामा मामा आ गई, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: तो उतार लीजिए उसको।
0: एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
0: अच्छा ये बेब है। एक सेकंड, एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
0: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा। चल
1: उतार दीजिए।
0: एक सेकंड, एक सेकंड, उतार दिया, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ जाए जरा। देखो देखो, आंटी कर रही
1: है,
0: क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो,
1: क्लैपिंग करो।
0: हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ।
0: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
11: पहले भी मैं तुमसे मिला।
12: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
13: विशाल मिश्रा
10: of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
17: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
18: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी लाइफ में सब कुछ सेम लगने लगता है, मतलब सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम गोल्स, पर फिर भी हम थोड़ा पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या इसे बेटर बना सकते हैं। और अक्सर जवाब होता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रीथिंक, थोड़ा सा रीसेट और चीज़ें ज़्यादा अलाइन।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
7: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
6: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
8: अभी न जाओ छोड़ कर।
7: 28th June, 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
9: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
10: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
9: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
11: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
10: ये प्यार जहर की तरह होता है।
9: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
10: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
12: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
13: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
14: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
15: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
2: कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है। मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जानी तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुली था। कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज्ड म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था। लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वाज एंटायरली अ जेन जी थीम। जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तू या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी जेन जी एंथम बन गया था, बिफोर जेन जी वॉज इवन अ टर्म। जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स अनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था। मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था। और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कान डांस फ्रॉम जाने तू या जाने ना का एल्बम, जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान। और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था, बिफोर द फाइनल मिक्स। तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कान डांस वाला, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: This is the future, man.

कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2008 के एल्बम की, जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके ना हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनादर सॉन्ग, अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरे मिलाना, नजरे चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिरमाया गया है इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पे मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरे मिलाना नजरे चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनादर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरे मिलाना नजरे चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने तो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कंपोज बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है, बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार, ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपके भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार, ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे। वो बस एक लंडन गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे, लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स है जो आपको पसंद है, जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, और तब तक के लिए जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो।
1: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए,
1: आज के बाद घर से घर आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
10: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
9: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
11: अभी न जाओ छोड़ कर।
10: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
12: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
13: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
12: Renew?
13: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
12: What better way to celebrate than with something timeless?
13: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Ek sapna, ek vada. और एक सफर जो दिल को छू जाए।
15: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से दिखा तक नहीं।
14: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
16: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
15: ये प्यार जहर की तरह होता है।
14: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
15: इसकी एक भी बूंद अंदर रहेगी ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
14: पहले भी मैं तुमसे मिला।
2: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra. Vishal Mishra.
13: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
15: and SaiUSAInc.com.
16: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes... The Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
17: Listener, mein back to back gana sunega.
18: Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, ए आर रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
8: Chamakte Sitare 2026.
7: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओस दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओहो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हां, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिरमाया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: Hi,
3: Benji. Ye, one second. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटी। चुप,
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं नहीं, हाँ इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड। नहीं, चुप हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं नहीं,
3: हाँ
2: इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ।

0: आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो देखो आंटी कर रही
1: है,
0: क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो
1: क्लैपिंग करो, चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
0: हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
0: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
10: पहले भी मैं तुमसे मिला।
11: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
12: विशाल मिश्रा
13: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त दस डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy or
9: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
14: एब्सोल्युटली, एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू।
13: Renew?
14: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
13: What better way to celebrate than with something timeless?
14: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab, mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाना बजा दूं।
1: शाम शानदार, let's do non-donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।